जीवन जलने का नाम चलते रहो सुबह और शाम। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम यहाँ से और साथ में मिलकर श्रवण की है।

हाँ सुनने वालों, दिल के सहारा आजा प्यार करे, और ज़रूर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार से आप है, प्यार से हम है, प्यार से ये सब सारा जहान है। आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आए खुशबू।

चले थे साथ मिलकर और चलेंगे साथ मिलकर, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी, जरूर से हसीना मान जाएगी।

रणवीर कपूर जी के मीठी आवाज में नीले गगन के चले फिल्म हमारा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत सुनने वालों। कहते कि आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ कि क्या सोचूं। एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे हम, देखे तो किस फिल्म का है ये सुंदर सा गीत, जब जब फूल खिले। हाँ, जब जब फूल खिले फिल्म से निकाला गया है। और यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं लता जी की आवाज़ में, सुनेंगे सुने वालों आज इस खूबसूरत तारीख जो है यहाँ पर हम मिलकर और सुनते हैं चलते हैं। मोहब्बत खुद बतलाती है, मोहब्बत खुद बतलाती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसके आँखों में रहना है या किसके दिल में बसना है।

रास्ता सावन होगा, लता जी की आवाज में यहां से हमने मिलकर और श्रवण किए। जरूरत से ज्यादा सोचना, जी हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना भी खुशियां छीन लेता है।

so romantisch, so romantisch. दिल छू जाते हैं ये लफ्ज़े, रफ़ी जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने। सुने वालों, फिल्म का नाम शबनम।

राज राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं वो। इस बार हम सुनेंगे मुकेश जी की आवाज में।

हाँ जी, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। फिल्म का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आपसे बतला दे, आपने सुने, हमने सुने लता और मुकेश जी की आवाज़ में कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

नाम था ये दोनों का फिल्म में, और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। किशोरदा और लता जी की आवाज में यहाँ से हमने और सुने। दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होता है, दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, जिससे दोस्ती होती है बस वही स्पेशल हो जाता है। दोस्त के दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, दोस्त के दोस्ती में कभी रूल नहीं होता है, और ये सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं होता।

शलम आई मिलन की बेला से ये सुंदर सा गीत यहाँ लता और रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, चांद सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, हसीनों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और आप से हो तो उसे किस्मत कहते हैं।

अजनबी हूँ रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने। सुने वालों, फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है, हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है। तुम सदा मुस्कुराते रहना ये तमन्ना है हमारी।

सितारों का सफर, मशहूर गायक कुमार सानू, असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य, 20 अक्टूबर 1957 में पैदाइश हुआ। शादी किया सलोनी से और लड़कन शानन सानू, जान कुमार सानू, आना सानू। पिता के नाम थे पशुपति भट्टाचार्य, वो एक सांगर कोपोनिस्ट थे। पहला गाना कुमार सानू एक बंगाली गाना गाया फिल्म टीन कनी तक में, जो फिल्म बना। उसके बाद कुमार सानू का शौक था गाना गाने को, लेकिन गाना गाने से पहले, पहला गाना गाने से पहले कुमार सानू रेस्टोरेंट्स में किशोरदा का फेवरेट गाना गाते थे और उसका बड़ा फैन भी था किशोर कुमार का। तो पहला गाना गाने के बाद जगजीत सिंह ने उनको देखा कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में, वहाँ पर कुमार सानू मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, एक गीत पेश करता था। तो जगजीत सिंह इसे कॉन्टैक्ट किया और बातचीत किया। जगजीत सिंह ने कहा कि ना आप बॉलीवुड के गाना गाते हो, तो इसी तरह से कुमार सानू कदम रखा बॉलीवुड में। करण जी आनंद जी ने एक गीत लिखा और उन्हें कहा कि ये गीत को आपको पेश करना, तो 15 मिनट के अंदर ये गीत को पढ़कर और गीत को गाया। फिर करण जी आनंद जी ने कहा कि आपका नाम जो है केदारनाथ, उसको मैं रख देता हूँ कुमार सानू, इसलिए कि आप किशोर कुमार का बड़ा फैन हो, तो कुमार और सानू। तो तभी से इनका नाम पड़ गया कुमार सानू। कुमार सानू बहुत से डुएट भी पेश किया है दोस्तों, एक डुएट में पेश करूंगा साधना सरगम के साथ जो गाया है, जब से तुमको देखा।

सानू, कल्याण जी कुमार सानू को मौका दिया फिल्म जादूगर में गाने को और तुरंत दोस्तों इस फिल्म में प्राइज पिया। उसके बाद 5 साल लगातार कुमार सानू ने फिल्म फेयर अवार्ड पिया बेस्ट सिंगर 1999 तक में फिल्म जादूगर, 1999 तक में फिल्म साजन, 1999 तक में फिल्म दीवाना, 1992 तक में फिल्म बाजीगर, 1993 तक में फिल्म अ लव स्टोरी और 2009 में पद्मश्री का पद मिला कुमार सानू को भारत के सरकार से। कुमार सानू को भी बहुत स्टेज मिला, बहुत मदद मिला अनु मालिक से और साथ ही साथ अनु मालिक उनका नाम रखा किंग ऑफ मेलोडी। किंग ऑफ मेलोडी जैसे मैंने कहा बहुत से डुएट भी गाया है और अलका के साथ दिल कहता है आप सुनेंगे।

पद्मश्री कुमार सानू या किंग ऑफ मेलोडी 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और दोस्तों कुमार सानू को मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि एक रोज में एक दिन में अब इन डाक 28 गीत ये पेश किया, 28 नंबर कुमार सानू ने बनाया है एक दिन में। तो मैं सोचता हूँ किसी सांगर ने किसी गायक ने ये काम नहीं किया होगा जो कुमार सानू ने किया। कुमार सानू का स्पोर्ट हॉबी जो है वो है फुटबॉल और उसका फेवरेट अल्फताल जो है वो है ब्रासिलिया का, इसलिए अपन बेटा का नाम भी रख दिया है सीको। आप जानते हैं उन दिनों में एक बकेन स्पेलर था, बरुम स्पेलर ब्रासिली का सीको, तो उसी नाम से अपन बेटा का नाम भी रख दिया है कुमार सानू सीको। कुमार सानू चांद सितारे फूल और खुशबू, ऋतिक रोशन अमिताभ पटेल का फिल्म चांद सितारे से आप कहो ना प्यार, दोस्तों फिल्म कहो ना प्यार से ये सॉन्ग आप सुनेंगे पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू, न्यू दिल्ली में कुमार सानू को एक एक स्कूल है, विद्या निकेतन स्कूल, जहाँ पर गरीब लड़कों पढ़ाई करते हैं। कुमार सानू का फेवरेट गायक किशोर कुमार और जगजीत सिंह, और एक्टर है अमिताभ बच्चन। कुमार सानू ने 14 ताल दोस्तों, फेरतिंग ताल एंड फेरतिंग ताल हिंदी से मैंने रखा सॉन्ग, 14 भाषा में गीत पेश किया है। परिवार के साथ बॉम्बे में रहता है और आज तलु के गीत गाता है और नए नए गीत लेके आता है, और उसी तरह से उनका आवाज़ भी मीठा है। मिस्टर सानू के बारे में भी आपने कुछ बात सुना।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। जब से तुमको देखा है दामिनी फिल्म का नाम है। मिस्टर सानू एक बार फिर साधना सरगम के साथ

मिस्टर सानू, जब से तुमको देखा है सनम। दोस्तों, रातों का राजा हूं मैं, आप क्या सोचते हो? अभी तो रात हो या दिन, नहीं दिन हो या रात कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग रातों का राजा होता है वो उसी तरह से भी रहता है, दिन के भी उसी तरह से और रात भी हो जाता है तो उसी तरह से। कई रातों का राजा से मुझे मुलाकात हुआ है, कई रातों का राजा को मैं जानता हूँ। आप भी जानते हो किसी रातों का राजा का तो आप स्टूडियो में तार करके बता सकते हो।

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिससे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दरभर गीत बिरकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम।
1: और कहने वाले मुझको मरे भी,
0: और पहला दर्द भरा गीत सुबह पे दर्द भरी, सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई माइटी मुकेश के आवाज में।

चाहे जो तुझे दिल से, चाहे जो तुझे दिल से मिलता है मुश्किल से, ऐसा जो कही है बस वही सबसे हसी है। उसके हाथ को तुम थाम लो, उसके हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो न हो।

दूसरा डर भरा गीत फिल्म प्रेम नगर से मैं निकाला हूँ। उन दिनों का सुपरस्टार राजेश खन्ना और नाइटिंगेल हेमा मालिनी प्रेम चोपड़ा एस डी बर्मन के म्यूजिक पर हसीनों का पुजारी किशोर कुमार के आवाज़ में ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा।

अंधेरा गया, सूरज निकल आया। है बेवफा, तुमने प्यार मुझसे किया, तुमने प्यार मुझसे किया और शादी उससे कर डाला। हम बुरे हैं हम जानते हैं, मगर जब तुम बोलते हो तो मैं मानते नहीं।

रहे हम महका करेंगे सितारों का सफर आप सुनेंगे और मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ के बारे में कुछ बातचीत होगा। जैकी श्रॉफ खबोरा बॉम्बे में हुआ इन फरवरी 5 तक। असली नाम जय किशन काकू भाई, पिता गुजराती थे और माँ उर्खूर से राजस्थान से आई थी। घर पर उतना अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए जैकी ने बहुत कम पढ़ाई किया। एक बार उन्हें ताज होटल में काम मिला लेकिन डिग्री इसके पास नहीं था तो काम वहीं से रुक गया। एक व्यवसाय के सामने खड़ा था तो एक रिक्लाम ब्यूरो का आदमी उन्हें देखा और बातचीत किया, क्यों ना आप मेरे रिक्लाम ब्यूरो में काम के लिए चले आते हो। तो उन दिनों से वो मोदेल वर्ल्ड में कदम रखा और उसके बाद देवानंद ने जैकी श्रॉफ को ले गया बॉलीवुड का फिल्म वर्ल्ड में। पहला रोल उन्हें मिला एक हंटलांगर का, शक्ति कपूर का हंटलांगर था फिल्म स्वामी डाडा में। उसके बाद फिल्म हीरो में होफ रोल जैकी श्रॉफ को मिला और ये फिल्म एक हिट निकला। तू मेरी जानू हो इस गीत में पेश करूंगा, उसके बाद जैकी का कहानी आगे जारी रहेगा। फिल्म हीरो का सॉन्ग

जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ 13 भाषा में फिल्म बनाया। नेहरी सीवन ताकतक में शारी किया फिल्म प्रोड्यूसर आयशा दत्त के साथ। दो लड़कन है, बेटा का नाम है टाइगर श्रॉफ, दो भी इन दिनों में एक्टर है बॉलीवुड में। जैकी ने आयशा को प्रशासक के सामने देखा और आयशा ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, 13 साल की उम्र था, फिर भी दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया। जैकी का रूप नाम दोस्तों, इन्हें लोग अभी जग्गू दादा के नाम से पुकारते हैं। अभी गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा क्यों।

मायना का सॉन्ग अभी आपने सुना, जैकी श्रॉफ यूही चावला के साथ फिल्म में काम किया। सितारों का सफर आप सुन रहे हैं राजन के साथ। जैकी का नाम किस तरह से जग्गू दादा निकला मैं आपसे बताता हूँ। जैकी श्रॉफ का एक बड़ा भाई था जिन्हें लोग जग्गू दादा के नाम से पुकारते थे, इसलिए कि गाँव में जब कोई के प्रॉब्लम होते थे तो जाकर इनका बड़ा भाई जग्गू दादा ने ये संभालते थे। तो एक बार एक छोटा सा लड़की पानी में गिर गया और पानी में डूब रहा था, उसी समय जग्गू ने देखा और तुरंत पानी में कूदा, ये लड़की को बचाया लेकिन खुद पानी में डूबकर मर गया। तो उसी दिनों के बाद गांव के लोग सभी फैसला किए, आज से आपका नाम जग्गू दादा हम लोग रख देते। तो उसी रोज से जैकी श्रॉफ का नाम पड़ गया जग्गू दादा। जैकी श्रॉफ को एक बार फिनांशियल प्रॉब्लम था दोस्तों, उसका मकान और गहना वगैरह वगैरह सब बेचा जाता, लेकिन प्रॉब्लम होता है जब तक किसी ने जब संभाल लेता है तो अच्छा होता है। एक गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा।

दादा या जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ का पैसे का प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, खर्च में ज़्यादा था और मकान में भी लगाया, तो ये एक हेल्थ की तरह ये हम लोग कहते लाला लाला के पास गया, वहाँ पर पैसा लिया लेकिन भरने के समय प्रॉब्लम हुआ। तो सलमान खान ने ये बात सुना कि उनका मकान ये सब बचाव वाला है, तो सलमान खान जाकर ये हेल्थ की तरह लाला से बातचीत किया और ये प्रॉब्लम हल्का हो गया। निहरी ट्वेन तक से आज तक बॉलीवुड में काम कर रहा है, लगभग 250 फिल्मों में काम किया। जैकी श्रॉफ का फेवरेट एक्ट्रेस आशा परेख है और परिवार के साथ इन दिनों में बॉम्बे में रहता है।

हुनुहुन्छ सानी दुपर आचुन है आज सबैको एक बार फिर म स्वागत करता हूँ वेलकम कहता हूँ मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका सेवा करने वाला हूँ सुबह लेको कभी शाम लेको

0: हर घड़ी करूं मैं तेरा इंतजार, कभी कभी इंतजार करते करते दिन बीत जाता है और रात भी कट जाता है, फिर भी इंतजार वो इस तरह से रुक जाता है। अखियों से गोली मारे, आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।
1: एक्टिव स्किन केयर एक्टिव्स फॉर एन इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन।

था जिसका डांस स्टाइल अलग है दोस्तों, रवीना टंडन के साथ काम किया फिल्म दुल्हे राजा में, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी मैंने आपके लिए पेश किया। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बात लेंगे हम आधे आधे, किशोरदा एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ों में।

बात लेंगे हम आधा आधा, क्या वादा है। मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो प्यार जो तुम निभा न सको।

तू मेरा हीरो नंबर वन। जब दिन नहीं कटते या रात नहीं गुजरते तो आपको क्या करना है, फाह और हिंदुस्तानी रिपर चॉइस के लिए आप रेडी हो और पूरे तरह से आपका दिन कट जाएगा और रात भी गुजर जाएगा। हमको तुमसे हो गया है प्यार, ये बात सही है या नहीं?

को तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे क्या करना है, जल्द से जल्द शादी कीजिए, हो न सके कि ये प्यार जो है चिड़िया की तरह उड़ जाए। दोस्तों, किशोरदा, लता मंगेशकर, राफी साहेब और मुकेश, ये चारों जो उन दिनों में बॉलीवुड को हाथ में थमा था, ये चारों के आवाज़ में ये गीत आप अभी सुना, हमको तुमसे हो गया प्यार क्या करे। उसके बाद मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाता है।

मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, क्या समझा नहीं समझा, जरूर समझ गए होगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबा पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गए। मसीह मोहम्मद रफी की आवाज में साथ आशा जी

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। जब गीत मैंने सुना तो एक छोटा सा शायर याद हो गया दोस्तों। अंधेरा गया सूरज निकल आया, अंधेरा गया सूरज निकल आया, है बेवफा तूने प्यार मुझसे किया, तूने प्यार मुझसे किया और शायरी उससे कर डाला। क्या बात है।

मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, मिर्ची कहाँ लगा, आँखी में या होठ पे या पता नहीं, लेकिन मिर्ची लगा है दोस्तों। अब की बार हम तुम युग युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। सुनील दत्ता नूतन ने काम किया फिल्म मिलन का सॉन्ग नाइटिंगेल लता एंड माइटी मुकेश के आवाज़ में आप सुनेंगे। सुनील दत्ता दोस्तों ये कलाकार फिल्म एक्टर बने से पहले ये रेडियो पर अनाउंसर का काम करता था।

0: Jouw bezorger staat niet zomaar aan.
1: हम तुम युग-युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे।
2: तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में। लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राण में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे। रिकी जीव जरन का है, हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल, यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

तुल्लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

फाहुंटी हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यू ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारो, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं और आओ मिल्क सुना जाए। मूवी का नाम है आदमी खेलौना।

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारों। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करती है। नैतिक गिल्ला था जी, परमाश श्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरे दिल में आते ही रहेंगे। आओ नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

रूठ आई और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर, अभी या महिया। अब देखो भैया क्या है,

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

0: इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे
1: आप जहां हो जैसे भी हो जरूर से आपको एक शुभ दिवस यहां से आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से पेश है सुनने वालों। यहां से हमने आपके लिए और चुन के रखी हूं कि पल दो पल का साथ हमारा

द बर्निंग ट्रेन से निकाला गया सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत पल दो पल का साथ हमारा। और सुनने वालों कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है।

वन टू चा चा चा, आशा भोसले जी की आवाज़ में हमने सुने। सुनने वालों, कहते हैं कि मिलते रहना सबसे, मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने से, मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत होते हैं दो पल साथ निभाने से, दो पल साथ बिताने से।

देखो नहीं, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय समय और इज्जत के।

जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए, ये आशा भोसले जी ने फरमाए हैं। और आप जुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

कहते हैं कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। और जो जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा।

0: film वर्दत, उषा उत्तप और बप्पी लहरी की आवाज में हमने सुनने की तू मुझे जान से भी प्यारा है। Het leven is te kort om ruzie te maken en boos te worden. Het leven is te kort om ruzie te maken en boos te worden. Wees dankbaar voor je geluk. Wees dankbaar voor je geluk. Hou van je familie en je vrienden die er altijd voor je zijn. Lach vaker. Hasso, hasso, lach vaker en leef elke dag volop. यादों की छाओं में ख्वाबों की गांव में तय कर रहा है सफर। यादों की छाओ में ख्वाबों की नाव में तय कर रहा है सफर, कल्पनाओं की नाव गांव में। सौ ख्वाब है और जिंदगी एक।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

लगे ना रे जियरा, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी के ना टूटे लड़ी। नितिन मुकेश और लता जी की आवाज में हमने सुने। फिल्म का नाम क्रांति, जिसे हमने कहा है सुने वालों।

जीवन जलने का नाम चलते रहो सुबह और शाम। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम यहाँ से और साथ में मिलकर श्रवण की है।

हाँ सुनने वालों, दिल के सहारा आज आप प्यार करें, और ज़रूर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार से आप है, प्यार से हम है, प्यार से ये सब सारा जहान है। आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आए खुशबू।

चले थे साथ मिलकर और चलेंगे साथ मिलकर, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी, जरूर से हसीना मान जाएगी।

सागर कपूर जी के मीठी आवाज में नीले गगन के चले फिल्म हमारा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत सुनने वालों। कहते कि आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ कि क्या सोचूं। एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

कि नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। हम देखे तो किस फिल्म का है ये सुंदर सा गीत, जब जब फूल खिले। हाँ, जब जब फूल खिले फिल्म से निकाला गया है। और यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं लता जी की आवाज़ में, सुनेंगे सुने वालों आज इस खूबसूरत तारीख जो है यहाँ पर हम मिलकर और सुनते हैं चलते हैं। मोहब्बत खुद बतलाती है, मोहब्बत खुद बतलाती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसके आँखों में रहना है या किसके दिल में बसना है।

पश्चिम बरसता सावन होगा, लता जी की आवाज में यहां से हमने मिलकर और श्रवण किए। जरूरत से ज्यादा सोचना, जी हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना भी खुशियां छीन लेता है।

so romantisch, so romantisch. दिल छू जाते हैं ये लफ्ज़े, रफ़ी जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने। सुने वालों, फिल्म का नाम शबनम।

राज राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं वो। इस बार हम सुनेंगे मुकेश जी की आवाज़ में।

जी, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। फिल्म का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आपसे बतला दे, आपने सुने, हमने सुने लता और मुकेश जी की आवाज़ में कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

अरे ये नाम था ये दोनों का फिल्म में, अब फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। किशोरदा और लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने और सुने। दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होता है, दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, जिससे दोस्ती होती है बस वही स्पेशल हो जाता है। दोस्त के दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, दोस्त के दोस्ती में कभी रूल नहीं होता है, और ये सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं होता।

फिल्म आई मिलन की बेला से ये सुंदर सा गीत यहाँ लता और रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, चांद सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, हसीनों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और आप से हो तो उसे किस्मत कहते हैं।

अभी हूँ रफ़ी जी की आवाज़ में। हमने सुने सुने वालों, फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है, हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है। तुम सदा मुस्कुराते रहना ये तमन्ना है हमारी।

सितारों का सफर, मशहूर गायक कुमार सानू, असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य, 20 अक्टूबर 1975 में पैदाइश हुआ। शादी किया सलोनी से और लड़कन शानन सानू, जान कुमार सानू, आना सानू। पिता के नाम थे पशुपति भट्टाचार्य, वो एक सांगर कोपोनिस्ट थे। पहला गाना कुमार सानू एक बंगाली गाना गाया फिल्म टीन कनी 1973 में, जो फिल्म बना। उसके बाद कुमार सानू का शौक था गाना गाने को, लेकिन पहला गाना गाने से पहले कुमार सानू रेस्टोरेंट्स में किशोरदा का फेवरेट गाना गाते थे और उसका बड़ा फैन भी था किशोर कुमार का। तो पहला गाना गाने के बाद जगजीत सिंह ने उनको देखा कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में, वहाँ पर कुमार सानू मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, ये गीत पेश करता था। तो जगजीत सिंह

इससे कॉन्टैक्ट किया और बातचीत किया, जगजीत सिंह ने कहा कि ना आप बॉलीवुड के गाना गाते हो, तो इसी तरह से कुमार सानू कदम रखा बॉलीवुड में। करण जी आनंद जी ने एक गीत लिखा और उन्हें कहा कि ये गीत को आपको पेश करना, तो 15 मिनट के अंदर ये गीत को पढ़कर और गीत को गाया। फिर करण जी आनंद जी ने कहा कि आपका नाम जो है केदारनाथ, उसको मैं रख देता हूँ कुमार सानू, इसलिए कि आप किशोर कुमार का बड़ा फैन हो, तो कुमार और सानू, तो तभी से इनका नाम पड़ गया कुमार सानू। कुमार सानू बहुत से डुएट भी पेश किया है दोस्तों, एक डुएट में पेश करूंगा साधना सरगम के साथ जो गाया है जब से तुमको देखा।

कुमार सानू, कल्याण जी कुमार सानू को मौका दिया फिल्म जादूगर में गाने को और तुरंत दोस्तों इस फिल्म में प्राइज पिया। उसके बाद 5 साल लगातार कुमार सानू ने फिल्म फेयर अवार्ड पिया बेस्ट सिंगर नीखन तक में फिल्म जादूगर, नीखन तक में फिल्म साजन, नीखन तक में फिल्म दीवाना, नीखन तक में फिल्म बाजीगर, नीखन तक में फिल्म अ लव स्टोरी और नीख में पद्मश्री का पद्म मिला कुमार सानू को भारत के सरकार से। कुमार सानू को भी बहुत स्टेज मिला, बहुत मदद मिला अनु मालिक से और साथ ही साथ अनु मालिक उनका नाम रखा किंग ऑफ मेलोडी। किंग ऑफ मेलोडी जैसे मैंने कहा बहुत से द्वेट भी गाया है और आलका के साथ दिल कहता है आप सुनेंगे।

सानु या किंग ऑफ मेलोडी 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और दोस्तों कुमार सानू को मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम लिखा गया इसलिए कि एक रोज में एक दिन में अब इन डाक 28 गीत ये पेश किया 28 नंबर कुमार सानू ने बनाया है एक दिन में। तो मैं सोचता हूँ किसी सांगर ने किसी गायक ने ये काम नहीं किया होगा जो कुमार सानू ने किया। कुमार सानू का स्पोर्ट हॉबी जो है वो है फुटबॉल और उसका फेवरेट एलस्ताल जो है वो है ब्रासिलिया का, इसलिए अपन बेटा का नाम भी रख दिया है सीको। आप जानते हैं उन दिनों में एक बकेन स्पेलर था बरुन स्पेलर ब्रासिली का सीको, तो उसी नाम से अपन बेटा का नाम भी रख दिया है कुमार सानू सीको। कुमार सानू चांद सितारे फूल और खुशबू ऋतिक रोशन अमिता पाटेल का फिल्म चांद सितारे से आप कहो ना प्यार दोस्तों फिल्म कहो ना प्यार से ये सॉन्ग आप सुनेंगे पद्मश्री कुमार सानू की आवाज में।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू, न्यू दिल्ली में कुमार सानू को एक एक स्कूल है, विद्या निकेतन स्कूल, जहाँ पर गरीब लड़कों पढ़ाई करते हैं। कुमार सानू का फेवरेट गायक किशोर कुमार और जगजीत सिंह, और एक्टर है अमिताभ बच्चन। कुमार सानू ने 14 ताल दोस्तों, फेरतिंग ताल एंड फेरतिंग ताल हिंदी से मैंने रखा सॉन्ग, 14 भाषा में गीत पेश किया है। परिवार के साथ बॉम्बे में रहता है और आज तलु के गीत गाता है और नए नए गीत लेके आता है, और उसी तरह से उनका आवाज़ भी मीठा है। मिस्टर सानू के बारे में भी आपने कुछ बात सुना।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। जब से तुमको देखा है, डामिनी फिल्म का नाम है। मिस्टर सानू एक बार फिर साधना सरगम के साथ

मिस्टर सानू जब से तुमको देखा है सनम। दोस्तों रातों का राजा हूं मैं, आप क्या सोचते हो? अभी तो रात हो या दिन, नहीं दिन हो या रात कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग रातों का राजा होता है वो उसी तरह से भी रहता है, दिन के भी उसी तरह से और रात भी हो जाता है तो उसी तरह से। कई रातों का राजा से मुझे मुलाकात हुआ है, कई रातों का राजा को मैं जानता हूँ। आप भी जानते हो किसी रातों का राजा का तो आप स्टूडियो में तार करके बता सकते हो।

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिससे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दर भड़गीत बिरुकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम।
1: ओ कहने वाले मुझको परे भी,
0: और पहला दर्द भरा गीत सुबह पे दर्द भरी, सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई माइटी मुकेश के आवाज में।

चाहे जो तुझे दिल से, चाहे जो तुझे दिल से मिलता है मुश्किल से, ऐसा जो कही है बस वही सबसे हसी है। उसके हाथ को तुम थाम लो, उसके हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो न हो।

के अमलर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए और आज के वक्त में, आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है आपके लिए। चलो ये भी सुनते हैं कि प्यार का वादा 50-50 क्या है इरादा। चलो बता दो ना क्या है इरादा।

किशोरदा किशोरदा जी की आवाज में साथ दे रही आशा भोसले जी की प्यार का वादा 50-50 इसमें कलाकार सुपर सुपर हिट सुपर सुपर सुपर स्टार रजिश खन्ना तीना मुनीम के साथ अपना गीत यहाँ प्रदर्शन की है इस फिल्म में कि प्यार का वादा 50-50 और फिल्म का नाम भी 50-50 है। याद है ना ये फिल्म आपको? और कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं हम कि जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं हम जहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ से ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें जिंदगी में मज़े ले रहे हम जिंदगी के मज़े ले रहे हैं या जिंदगी हमारे से मज़े ले रहे हैं। तो सोचो तो कि जिंदगी आपसे मज़े ले रहे कि आप जिंदगी के मज़े ले रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है ना।

अब बस आप ही बता दो, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? मैं सुन रही हूँ, हाँ दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। जिंदगी में प्यार चाहिए और पैसा चाहिए। ये सुना दी हमको इस बार फिर, हाँ हाँ डबल, ये कपल किशोर दा और आशा भोसले जी। इस बार फिल्म छैला बाबू से निकाल दिया गया है आपके लिए। नेखन तीन सीफन सीफन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। इस बार कलाकार इस फिल्म में रजेश खन्ना और सीनत तम

Hartelijk welkom op deze mooie zaterdagochtend. Aaj doei tarik ho chala hai, 2 mei ho chala hai. Hum chahe roye ya gaaye, par samay ja raha hai. Isse hum rok nahi sakte. हम रुक जाएंगे सफर में पर ये समय नहीं रुकने वाला हम तो रुक जाएंगे पर ये समय तो नहीं रुकने वाला है ये तो चलते ही जाएगा मेरे दोस्त यहां से हमको सोचना है कि हमें क्या करना है ना गम से डर ना खुशी पे इतरा ना गम से डर और ना खुशी पे इतरा जिंदगी का यही है मंत्र जिंदगी का यही है मंत्र जो आया है उसी में जी ले तू जो आया है मेरे दोस्त उसी में जी ले तू कल का क्या है बस आज संभल जा तू हम आज संभल जाए और ये पल जो हमें मिला है इसी में हम इतरा ले मुस्कुरा ले साथ बिता ले तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी है ना

0: हम पहले कहीं मिले नहीं?
1: सॉरी, डोंट रिमेम्बर।
0: तुम? मेरा मतलब है आप रमा से नहीं?
1: शी इज डेड। माय नेम इज रोजी।

आशा भोसले जी भी कितने सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गाना और गाकर यहाँ से हमारे खातिर तो छोड़ गया है, हम उसे सुनते हैं और पसंद करते हैं। मेरे दोस्त, इस बार फिर एक बार खूबसूरत गीत यहाँ से आपके लिए पेश हो रही है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, और क्या कहना चाहती हूँ वो ये है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है, है ना? कुछ जाने पहचाने शब्द है ना, कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है तो कभी अपना भी बदल जाता है। ज़िंदगी का सच यही है दोस्त, कि ज़िंदगी का यही सच है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टैंडफास्ट है। ना ना, स्टैंडफास्ट एक फूल का नाम है, पर वो भी बदलते हैं। हम ऐसे सोचे, हमें दूर नहीं खोजना है, दूर हमें नहीं खोजना, हम अगर अपने आप को देखें ना, तो कभी हम शिशु थे, बच्चे थे, बेबी थे, और आज कितनी उम्र के हो गए हैं, और हमारा शरीर कैसा था और आज कैसा है। शरीर का अपना एक अंग आप देखें तो सोचो कि कैसा था और आज कैसे है। तो यहाँ कहती हूँ भी कि यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है।

दूर दूर से लोग ये रेडियो को फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, आप भी फॉलो करते हो, आपकी भी बहुत सारी बधाइयाँ पेश किया जाता है। और हमने सुने हैं, देखे तो ये फिल्म का नाम है चरित्रहीन, फिल्म का नाम चरित्रहीन से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है। चरित्रहीन कहते हैं जो जिकर चाल चलन ठीक नहीं होता है, उसको कहते हैं चरित्रहीन। तो वही फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमसे सुने हैं। इसमें कलाकार है संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। छैला बाबू से हम सुनेंगे, मैं छैला बाबू और आप क्या है।

माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, पर यह सुनेंगे हम, मैं बाबू छैला आई एम सॉरी।

0: देखो मीम साहब, ये तुम्हारा चिक्कू फ्रेंड है ना, बहुत देर से किट किट कर रहा है। ये कबाब में हड्डी है, ज्यादा किट किट करेगा तो हड्डी को हम अलग कर देगा।
1: हाँ, इसको अलग कर दीजिए। कैसे अलग कर देगा?
2: रीटा हमारा जालिंग है।
0: लो रीटा, तमाशा।

बाबू छैला छैला बाबू, यहाँ से हमने श्रवण की है नेहन 3 सीफन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। जैसे आपको कही है कि इसमें कलाकार है राजेश खन्ना जी और सीनत अमन। ये दुनिया है एक नंबरी तो आप है 10 नंबरी, ऐसा ही होना चाहिए। कभी सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। जैसा भी परिस्थिति होवे बस मुस्कुराते ही जियो। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये तो मैं मानती हूँ कि जिंदगी एक इम्तिहान है मेरे दोस्त। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन एक नया सवाल है। हर दिन एक नया सवाल है, जो मुस्कुरा कर जी ले इसे। सुनिए जी, जो मुस्कुरा कर जी ले इसे, वही करते हैं असली कमाल। तो आप भी वही कमाल कीजिएगा। और कहते हैं कि जब दुनिया एक

0: के बाद आज ही गाना सुना तुम्हारा। ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा, इस घर में बहुत कुछ है, केक भी है, हलवा, बादाम।

हाँ तो आप भी 10 नंबरी बनो, 1 नंबरी पे ना ठहरो। मुकेश जी और लता जी की आवाज में हमने श्रवण की है फिल्म का नाम 10 नंबरी। 1966 में ये पिक्चराइज किया गया है। इसमें कलाकार है मनोज कुमार और हेमा मालिनी जी। जिंदगी को इतना सीरियस मत लो, जिंदगी को इतना सीरियस मत लो। ये पल दो पल का खेल है मेरे दोस्तों, ये पल दो पल का खेल है। कल का किसको पता है, कल का किसको पता है, कोई को नहीं। आज ही सबसे स्पेशल बना लो, आज ही सबसे स्पेशल बना लो। जो कल करना है वो आज ही कर लो, और आज पे ना टालो। जो कल करना है वो आज ही कर लो, और जो आज करना है वो अभी कर डालो। पर वही करो मेरे दोस्त कि जो अच्छा हो, जो अच्छा कार्य है वही को आज पे अभी पर कल डालो, और जो बुरा विचार है उसे बरसों नरसों पर आप छोड़ेगे ना तो आपको उसमें से अच्छाई दिखेगा। तो जो अच्छा है वो आज ही कर डालो, और जो थोड़ा से बुरा है वो भी बुरा है, जो बुरा है उसे कल परसों पे छोड़ दो। सुनेंगे हम कि प्यार में, कि दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है, आपको भी मुझे भी। जिस घर में हम रहते हैं उसको भी, क्योंकि प्यार से आप जिस घर में रहोगे तो वो प्यार से आपको अपने ही घर में रखेगा। अगर सहमत नहीं हो तो आजमा कर देख लेना।

प्यार की दुनिया में सबको ज़रूरत है। ये पिक्चराइज किया गया है नेहन तीन सीफन तख में। फिल्म का नाम समझौता, समझौता से निकाला गया है और इसमें कला मुमताज़ दी और रजे

शायद मेरे ख्याल से आज आप तक भी कभी नहीं सुने होंगे, तो सोचती हूँ आपके लिए ये भी चला देती हूँ। जान पहचान तो पहले से थी और अब पहचान रिश्ते में कैसे बदलते हैं।

ऐसे चुने गीत आज हम आपके लिए पेश किया। ये मुझे भी पता नहीं था, फिर भी किशोर दा जी के आवाज़ में और आशा भोसले जी के आवाज़ में ये कपल आज के प्रोग्राम में शामिल हो गई है। बड़े ही अजीब है ये ज़िंदगी के रास्ते।

जी हाँ मेरे दोस्त, कि बड़े ही अजीब है ये ज़िंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे, सच में कि मिलने की खुशी दे या ना दे, जब कोई अनजाने मोड़ पर अपने बन जाते हैं, कुछ लोग जो अपने बन जाते हैं, तो उनसे मिलने की खुशी मिले या ना मिले, मगर बिछड़ने का गम ज़रूर दे जाते हैं। आप ये अपने जीवन में कभी देखे हैं? आपके जीवन में ऐसे भी कभी बीता हुआ है? स्पेशल स्पेशल आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। अगर आप कुछ गीत सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर से रेडियो पे फ़ोन लगाएं, कांटेक्ट करें 07-362-2077 पर। और अगर आप अपना मन चाहा गीत सुनना चाहते हो तो ज़रूर से तार करें। इस वक्त आप लाइव सुन रहे हो, तार का नंबर 07-362-2077, स्टूडियो का नंबर, तो चले। शाइदा अलादीन, शाइदा अलादीन जो वातरिंग में रहती है, फरमाइश की है ये गीत सुनने के लिए, तो शाइदा अलादीन आपके लिए पेश है ये मांग की हुई गीत आपके लिए, सभी सुनने वालों के लिए, और यहाँ से आपको मौका है तार करने के लिए

मैं भी बहुत गहरी सांस लेती हूँ ये गीत सुनकर, जो मन्ना दे जी ने अपने ही आवाज़ में और हमको यहाँ से सुना दी है। दर्द भरी बयान और इसमें कितनी सच्चाई भी है। पसंद करने वाली है वातरंग के रहने वाली शाहिदा अलादीन। और भी टेलीफोन भी अंदर आई है और जो खास लोग पसंद की है। मेरी ये समझ में नहीं आती है वो खास लोग जो भी है सुनती है वो नहीं चाहती कि मैं उनका नाम रेडियो पे ले लूं। चलो तब वो ठीक है। और एक फिर गुजारिश है कि गपची गपची गम गम रायश्री और जय जो पसंद की है।

और ये आज का समाचार है, अभी का समाचार है, अभी 2 मिनट गुजरे ये आई है भीतर। तो सोचती समझती हूँ कि आपको ज़रूर बता दे, और ये है मौसमी समाचार। Onweers buien trekken vanavond over Nederland, ook kans op hagel. Het KNMI heeft de weersverwachtingen voor vanavond iets bijgesteld. Code geel zal vanaf de middag actief zijn in het hele land. Maar geldt nu nog voor 9 provincies. Beginnend met Limburg vanaf 3 uur vanmiddag. Vooral lokaal kan veel regen vallen. Het KNMI houdt rekening met hagelstenen van 2 centimeter. Ha, mere sune walo, aapne sune. Hagelstenen van 2 centimeter en onweersbuien met windstoten tot 70 kilometer per uur. Daarnaast kan er lokaal 10 tot 20 millimeter regen vallen. Ter vergelijking, in heel april viel gemiddeld slechts 8 millimeter regen. Als je het weet, dan is het veel dagen tot बारिश नहीं हुआ तो आप देख रहे हैं कि पौधा कितना कोमला रहे हैं और धरती कितने सूखे हैं, और अचानक में ये बारिश जो आएगा तो कांस क्रोध दान ओक एरगंस ओवरस्ट्रोमिंग गात प्लाट्स विंदन।

तुम्हारी कसम से, ये सुने हम मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, एक ख़ास फरमाइश भी यहाँ है और वो है प्रबंध के रहने वाला नारायण दत्त सी नंदन के तरफ से हम सभी के लिए।

कहानी किस्मत की, इंसान हंसे या रोए, होना है सो होए। मुकेश जी की आवाज़ में कहानी किस्मत की फिल्म का नाम, कहानी किस्मत की फिल्म का नाम। मेरे ख्याल से मैं भी ये फिल्म को जाकर और देखूंगी, लेकिन तीन द्रियन से फन तक के, क्योंकि इसका टाइटल जो है ना कहानी किस्मत की, तो ज़रूर से इसमें कुछ ऐसा ही फिल्म बना होगा जिसमें हम अपना जीवन में कुछ इससे प्रयोग कर सके। अगर देख ले तो, अभी तो नहीं देखी हूँ पर देखूंगी ज़रूर कहानी किस्मत जी की, कहानी किस्मत की मुकेश जी के आवाज़ में अच्छे ही भले से हमको सुना दी है। मेरे दोस्तों, पसंद की गई है एंथोफा शहर, ब्रांबांत एंथोफा शहर के रहने वाला नारायण दत्त शिवनंदन की तरफ से आपके लिए पेश किया गया है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। थैंक यू जो आपने स्टूडियो में कॉल की है। यहाँ से हम थोड़ा से रुख मोड़ेंगे, यहाँ से रुख थोड़ा से हम मोड़ेंगे, रुख मोड़ेंगे गीत के अनुसार में। उससे पहले ये बता दे, ये समाचार अब बता दे कि तीन एक्स्ट्रा लेख मास्टन फॉर डोंकर वेख नुमन है द स्पोक रुत, और ये समाचार है लेदन की। द गमेंट लेदन कोम्ट ना मेर दर क्लाख्तन en zorgen over de spookroute tussen Zoeterwoude en Leiden met extra verlichting. De onheilspelende fietsroute was in de ogen van de bewoners te donker. Nadat de gemeente 2 weken terug nog had aangekondigd de fietsroute niet extra te verlichten, komen ze nu toch over de brug met 10 extra straatlantaarn, dat is toch goed? De Vrouwenweg, Jiha Abtiksune, de Vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude joeg de afgelopen tijd menig mens de stuipen op de lijf. De bewoners rond de fietspad organiseerden een fietstocht over de lugubrere weg en samelden handtekening in voor extra verlichting. In de hoop dat de gemeente de boodschap zou begrijpen, en de gemeente heeft dat ook begrepen, en dat heeft hij ook, laat me even kijken, ja, 10 extra straatlantaarn geplaatst. Dat is toch heel goed.

हाँ पसंद है ना, मुझे पता है आपको पसंद है, इसलिए मैं चुन कर आपके लिए चला दी हूँ। तार करने के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ से एक और चटनी, इस बार है रोहित और राय।

आपने सुने, हमने यहाँ से सुना दिया आपको द स्टार्स से, म्यूजिक फॉर्मेट से द स्टार्स से। इस बार हम सुनेंगे पॉम पॉम। पहली बार मैं भी सुन रही हूँ। अरे बातें सुन लो, उसके साथ में ये दो गीत मेरे ख्याल से इसमें जोड़ जोड़ दिया गया है, एक मैश अप है। Enjoy, enjoy, it's your time.

सागन सागन विद विद वाहन, ये भी एक सुंदर सा गीत अब जो काफ़ी काफ़ी हलचल मचाई है यहाँ देश में और विदेश में। विदेश यानी कि सुरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, कैराइबीज का बीच में मोर चिरैया तोर चिरैया के साथ यहाँ से मैं आपसे रुखसत हो रही हूँ आज के लिए। आप ज़रूर से फॉलो करते रहना, यहाँ पर से मेरी बात प्रोग्राम मेरिंग चलेगा और आगे में चल के ज़रूर से लाइव प्रोग्राम हमारा दोस्त अनाउंसर साथी ज़रूर से आएंगे। तो तब तक आप फॉलो करते रहना, स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी नमस्कार।

0: Kala na jane uchinich, kala na jane jaan. Sorsi de maat aan DJ, humko apni aanzir maande.
1: Apni beta bhi ko main kaise tujhse izhar karun.
0: Tamam radio fahun ki sunne walon ko hamara ram ram namaskar, pyar bhari adab, sat sri akal. जोनी नंबर वन है हमारा नाम आज की देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम

हमारे चाचा, हमारे काका और हमारे हर एक प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपको हम यहां से बहुत प्यार देते हैं। एक बार फिर भी और लेकर चलते हैं सूरीनामी देश की ओर, कि सूरीनाम देश में भैया एक औरत रहा भैया। सोचे हैं हम आइला घरे और जाबे घरे हम, तब बहुत प्रेम से अपन खाना पीना खाए के और जाए के प्रेम से आराम करब। मैं बिचारी के का पता रहा, ये बात हुए है लन फन लुइस हॉफ में भैया। हाँ नाना, ये बिचारे के का पता रहा कि ओके तीन गो डाकू बैठ के घरे और अगोरे है भैया। हाँ सोचो तो, ओके बैठ के चोरन डाकू लुटेरा और बैठ के ओके रिश्ता से अगोरे जैसे कोई कटिया लगावे है। अब बोले अब्बे कुकुहिया खाई ऐसे ही औरतिया बिचारी ये घरे गईल है और 3 बजे के बात है रात के, तो एक के 5 गोल लुटेरा भैया ऊपर फाल करी से और बताए गई है जैसे घर गईल है तुरंत ओके लूटी से और ओके 16 बरिस के एक लौंडा उस समय पे घरे रहा होकर बेटवा सस्ती निया रख सोन वास ऑफ दैट मोमेंट आलीन टाइस मेंशन कैमरा बेल पे दिखिए दादस ऑन कफे द्री मुनीतन फोर हन आन कॉम्स द वोनी वारर बेन खदरोन और ले गए हुआ से 10,000 एसर दे नानी 200 यूरो और 200 अमेरिकन डॉलर और हमारा मनोरथ बोले हम लोग के क्रिमिनालिटी साका हुई है। कितना मुझे बोले साका हुई है और ले से साया हाइटियान के ऑफिसर। हाँ तो बोले हैं हम लोग के सरनाम में भैया सुंदर हीरा भी आ गया है उस्तादों को उस्ताद लुंडा के नाच के नगारा के। और तो भैया हीरा हम लोग के सूरीनाम देश में हनीस मनोरथ जो यूसीसीएन पुलिस के और जाए के मिनिस्टर है, बोले हम लोग के सूरीनाम के क्रिमिनालिटी साखा हुई गई आई बिचारी घरे गए ले मीठा मीठा और 5 लुटेरा एगो उज्जर उज्जर त्यूता पे और एक के लूट ले से भैया लूट ले से और ले से हाय तियान शाया के मनोरथ। बोले है ना, बोले है कि हमार ऑफिसर है भाई बड़ी लोग एमा एकर बारे में सोशल मीडिया पे और एकर बारे में रिएक्शन दे इसकी कोन ना इंस्टे कोनो बोले है। और ये भैया मनोरथ बोले है, बोले हमें सो में बोले देगा, बोले का बोले हैगा ऑफिस करेगा या बोले पॉलिसी ऑफिसर है जो बांसुरी नाम के। तो शीला गौरी चरण गजरी आपको भी हम स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो भैया हीरा और देखो मनोरथ के यहाँ का बोले पॉलिसी ऑफिसरन बोले हैगा जब शाया हाइटियान बोले जब हमारो के कंतोर रोमते में आएगा तब बोले हम ओके वेखर कर भीतर आवे के बोले उन्ना आई हमार कमरा में। बांद बोले पॉलिसी ऑफिसरन सोलन तू सोलन साया तू खांग तो कंतोर रोमसन वेखरन बेई बसुकर मिनिस्टर मनोरथ के। तो ये बात है तो ऑफिसर फन पॉलिसी बोले है जेन साया मिक्सन जो ने अंदर नीमर हाइथियान है बोले ओके कंतोर हम बोले हम लोग ना आवे देबे और बोले हैगा तैदस बसुकर फयसिस हनीस मनोरथ मेलो बोले उना आई सके मनोरथ आई सके है। और बोले देत बसलाई फलक ना दद रखेरे दोंदर डाक के फरक्लार करी से कि मिक्सन खीन ऑफिशियल बनुम द ऑफिसर हैगा
ही मारे जो बनूम करेगा आस ऑफिसर तब साइटों के संबंधीगा मो ऑफिशियल ना है तो साया लिपूस दाग सामन में मनोरत मी तय दसर ओरियंटा ची बचुक आन ओंदर मी द क्यूरिंग डींस और बेस्टान परमारी बो गफेस्टक्त बिरो खैर फ्लाइट में अतुलन दाने शाया ओंदरनीमर भैया ओतो ओतो बैतलान से मंगावे है तो जरूर कुछ मनोरत के जरूर बोले हुई कि हम में तू ले ले तब तो तरो तो वन हम सब क्यूर करवा देवे हो सके भैया नहीं बोली हम तो के ओतो देवे तो फॉल्क द ऑफिसर इज द अनवीस खैर फन मिक्सोन इन द कांटोन रायद तेने दरखलेके बसुकन ऑनगवेंस omdat het werk binnen justitie in hoge mate draait om vertrouwelijke informatie die te allen tijden. Bolle een vertrouwtje geweest dat de monorat donderdag onder vuur te liggen van zowel oppositie als coalitie over zijn uitspraak een dag eerder in de interview met Ubolize. Bolle Hegen waarin hij gaf dat hij Saya als adviseur had aangetrokken en dat daar niets mis mee is. तो अब जाओ ना भैया हनीस मनोरथ अब देना के फरक्लार करो कि कैसे अब हम का करें और ओके कोई ना मांगे भैया देख सुन के ये बात है। अब देखो भैया सूर्य जाति जो है सूर्य जाति के हम लोग जाने ला सूर्य नाम के सूर्य जाति के बातचीत हुए है नानी तो सूर्य नाम के सूर्य जाति भैया सूरीनाम के सूर जाति बोले मिली तेरा ना फरकेस ऑन खफाल वो भैया अरेडें कर ले रहा इंदिरा गांधी वेख पे तो हुआ एक हुरूप लंदन गए हुआ पे और हुआ का करी से 50 बरी के मिली तेरे है वो के लूट ली से भैया। तो भैया फतिंगन राम रांच आपको भी हम प्यार से स्वागत करते हैं तो हनी रस मनोरथ बोले है दाल हो गए है अवतार भी ये सिर्फ वही लेने सिर्फ आज से हमारा प्रोग्राम में आकर जुड़ गए हैं लेकिन अब तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। जितने जितने लोग हमारा प्रोग्राम में साथ दिए हैं आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्रताप अवतार

0: मुझ विजय जिंगड़ा इमरा इमरा राम तहल सिंह फतिंगन राम राज सुंदर हीरा ऐसे ऐसे और लोग है दोस्तों टोनी श्री हाँ और ये सबको हम बहुत बहुत प्यार देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। स्वाई स्वाई
1: U luistert naar Hindustani Radio,
2: Radio Fahun.
3: Digitaal radio, internet fahunfm.nl.

0: कर्म कहो किस्मत कहो, कर्म कहो किस्मत कहो चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रभावत पीछे बना शरीर, कर्म के कतले लाद के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा ही भरे विधि काई गई विधान, कर्म करे किस्मत बने जीवन का यही मरम प्राण, तेरे हाथ में प्राणी तेरा अपना है कर्म। सुनने वालों की सेवा में सादेसी नमस्कार, मेरी आदा हो चौरा उनकी दोपहर के प्रोग्राम, आज शनिवार का दिन तुवे और मई के यो है कार्यक्रम, यहाँ मैं आपका सेवक शाम पूर्ण आपकी सेवा करने को जा रहा हूँ। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारी सहयोगी शांता जी के जरिए से, ये देवी जी अपने अंदाज में प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, सोच रहा हूँ कि आपको पसंद आया हुआ होगा, और जिस अंदाज में यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यही सोचते हुए कि आपको पसंद आएगा, गलतियाँ हो जाए माफ़ कर देना, हमारे साथियों इंसान हूँ ना, क्या मैं कहूँ। आज वीकेंड थे, वीकेंड थे तो मई हो चला है, और वर्त ऊफर तो चला है। प्रथम में जो बीमार लाचार है उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर के, माते में घर पर सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, आपको भगवान जो जाकर सहन शक्ति प्रदान करे। कोई के जन्मदिन है, आज खुशी का दिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं, और एक लंबी आयु आपको हो और तंदुरुस्ती बनी रहे, यही हम भगवान से भी जाकर प्रार्थना आपके लिए ज़रूर कर रहे हैं, और हर एक के लिए ना सर्वभवंतु सुखिने, आप सुने ना, वो तो बात है और सही बात यही है कि खास करके हम यही चाहते हैं दुनिया में हर एक कोई जो सुखी रहे तो हम भी सुखी है। और आगे में चलकर कोई यात्रा पे जा रहा था, शुभ यात्रा हो हमारे साथियों, और यहाँ घर पे अतिथि बन के आए, हमारे देश में आए हैं, मुल्क में आए हैं, तो वहाँ आपको स्वागत है, सत्कार करते हैं। आज का प्रोग्राम अभी शनिवार है, तो अभी यहाँ से जो प्रोग्राम शुरुआत करते हैं, कुछ संगीत पे चलाऊंगा, और फैफ ऊफर हालिफ इन, फैफ ऊफर हालिफ इन प्रवचन आप सुनेंगे, अखंड विद्वान जो है पंडिता जो जाकर राम खेलावन साहिब दिन से, ये देवी जी प्रवचन जो संस्था आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, वैदिक धर्म वैदिक सनातन धर्म ने धर्म के प्रचार कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, इंसान के नाते अपना फर्ज जो है निभा रही है, तो उसे प्रवचन आप सुनेंगे, और दो और तीन के दरमियान श्रीमान रौली मोहन सुनाम से समाचार आपके लिए प्रस्तुत करेगा एक्चुअली जाकर। आगे में चलकर बीते हुआ हफ्ता जो तो बीत गया, फिर भी आज ऐसे बातचीत हुआ है, अगर कॉन्टैक्ट हो जाए तो श्रीमान यानी कि डॉक्टर जो जाकर शर्मा देव शर्मा से और कुछ बातचीत होगा पॉलिटिक राजनीति के क्षेत्र पर, और जो हो रहा है और इन दिनों आगे में जो होने वाला है हमारी पेहा पे के साथ क्या होगा, तो उसके बारे में और जाकर आपको बतलाएंगे। तो साथियों मैं आपका सेवक शाम पूरन हूं, और जिंदगी घड़ी बीत रहा है ना, पल पल जाकर बीत रहा है जिंदगी हमारी, और यही चाहते हैं हर एक कोई खुश रहे, हम भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, और हर एक मनोकामना जाकर भगवान पूर्ण करे, भैया चार गुना दंकवेल खुद नीत हर एक कोई जहाँ हो भी हो इस दुनिया में संसार में, और खुशहाल रहो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम तो है भैया श्री पूज्य पंडित जो है संजय भगवंत, उनकी बड़ा का भाई जो है रजेश भगवंत, इन दोनों की तरफ से आज का दिन भी शुभ हो। प्रभु शिव चेतन या स्वाद गौ फाहुन की संस्था के जो है इन लोगों के संघर्ष से ये रेडियो चलता है, सलमान कुमार घिराऊ सभी को ले खास दिल परमा दिन हर के तरफ से आपको सही खंड मोगे दाख बैसे मैं से फैन वीकेंड कहता हूँ। और एक पल मेरे साथ और चल के गुनगुना ले। आगे के प्रोग्राम चलते जैसे रहेगा, आप सुनते रहना, और जैसे मैंने आपसे कह चुका हूँ, मेरी जुबान से ऐसा कुछ ऐसा शब्द निकल जाए तो उसको यूं ही यही करना, नज़रअंदाज कर देना ज़रूर से, कहना कि जैसे आप सुने ही नहीं, फिर भी ये जानबूझ को उतना ही नहीं करूँगा, गलती हो जाए तो माफ़ी आपसे यूं ही ज़रूर चाहता हूँ, हमारे साथियों मित्रों और दोस्तों।
1: नए भक्ति प्रेम गान
0: कुछ पल के लिए मेरे साथ जुड़ कर ये गुनगुना ले हम
1: चैनल को, और क्लिक करें घंटी के बटन को।

0: U mag meezingen alsjeblieft.
1: Bolo Bhakto Siya Ram, Shri Ram ke charanon mein bante.
0: Vahon Hindustani Radio pe aap tune hai na. Dopahar ke karyakram aaj 2 May 2026 ki shanivar ka hai karyakram. हमेशा जैसे आपको मालूम है कोशिश करते हैं हम जो है और आपके लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कुछ कहना है तो जो अवश्य आप फोन कर सकते हो, यह मुमकिन है.

0: बजरंग
1: भी कभी कभी बोला करो ना,
0: हनुमान की बोल, बजरंग बली की बोल, पवन पुत्र हनुमान की।
1: और महावीर जो है जाकर पवन पुत्र हनुमान स्वामी जब बाबा की वंदना साथ में किए और ये संगीत सुने, ये भजन आज के ये दोपहर के प्रोग्राम में हमारे साथ क्यों, जैसे मैंने आपसे बताया अभी 10 मिनट के बाद उफती मिनट और जाकर मुफरो पंडिता श्रीमती साहिबदीन राम खेलावन से आप प्रवचन श्रवण करेंगे हमारे साथियों फैफ ऊफर हल्फ इन जो जाकर। तब तक कुछ संगीत और यही आपसे बतलाते चले ना, संगीत है अच्छा लगे तो वो भी बतला देना, ना अच्छा लगे तो फिर बतलाना दोस्तों, फिर भी बतला दो तो।

पुराने संगीत नए संगीत फिर भी ये संगीत जो आप सुन रहे हो लगता है ना जैसे आज ही पहला दफे आप सुन रहे हो। उन सरफलक अख्तवार

0: तुम्हारे साथ यो घड़ी तो चल रहा है ना, कहाँ जाएगा फिर भी। एक पल हम आगे जा रहे जिंदगी में और घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूँ, इन जो हो गया है जैसे आपसे वादा किए है। तो फेफ ऊपर और हलफ इन पंडिता देवी जो है श्रीमती साहिबदीन राम खिलावन जी से एक प्रवचन आप श्रवण करेंगे अभी कुछ घड़ी के अंदर में, और जाकर कुछ सेकंड के अंदर में हमारे साथियों, और यही मैं अपने और तरफ से उनकी स्वागत अभी जो यूं ही जरूर कर रहा हूँ, करने वाला हूँ हमारे साथियों। तो जाकर पंडिता श्रीमती साहिबदीन राम खिलावन जी और आपको दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाए के सादे से प्रेम नमस्ते, और आप आ गए हो अपना परिचय दे दो और एक प्रवचन आज के शुभ संदेश जो हमारे सुनने वाले हैं। आज का दिन तारीख जैसे आपको मालूम है 2 तारीख मई है, 2 मई 2020 दोपहर है और सेफ ऊपर हो चला है हलफ एन, और यहाँ से पंडिता जी हमारे साथियों सुनने वालों जहाँ भी आप हो और चल के ये शुभ संदेश चल के सुनते हैं। खातु खान
1: ओम यो भूतम च भवयम च सर्वम यश्चादिष्ठति स्वर्यस्य केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति ओम सर्वभूम अभिवादन इनफर्सील क्रूत नमस्ते मेट अल द क्राफ्ट फॉर मैन आर्मन मेट अल द वेसहेड इन मै मेट अल द लिफ्ट इन मैन हार्ट बतोन इट मैन प्लेट एंड एयर बीट aan de atma in u. Ik ben Chandra, zoals u heeft al bekendgemaakt, dus ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Op deze sikcha sikne yogya bate na sihat hitki bat betlana jise se sabka bhala ho. Updesh karne wala, sikcha dene wala, khum fir kar achi baato ko prachar karne wala व्यक्ति विद्वान जो अच्छा बनना चाहते हैं उसे उपदेश देना, जिस बात का उपदेश करना उचित हो, जो शिक्षा यानी ज्ञान देने योग्य बातें हो। एक हाथ ऊपर है रिलीजन एंड गॉड एंड डूल, दिस एन रिलीजन één God, één doel. Als wij weten dat er één schepper is die dit heelal heeft geschapen, dan is het logisch te denken en aan te nemen dat er maar één religie is die door de almachtige Paramatma God is geschapen. De andere religie of secten zijn gemaakt door verschillende mensen op verschillende tijdstippen. De door Paramatma God

0: हमारे साथियों, यहाँ तक आप सुने ये प्रवचन, आज का दिन ये शुभ संदेश, और जाकर जो हमारी श्रीमती और पंडिता साहिदीन रामखिलावन से, और जाकर आज के खनराज से जो है और सुनते और इतना सहल रूप में समझाए बतलाए, तो जाकर ज़रूर अपने काम में लाएंगे और मैं बाल बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे बतलाएंगे। अल के साथ रख जो उनकी प्रवचन होता है अब से हो रहा है, ये दूसरा था हमारे साथियों, एंड हर हाल में तो आपसे अवश्य सुनेंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। खसी खंड मोहिदा, एक शुभ दिन सुप्रभात देवी जी, और फाहुन जो मैं और फाहुन के प्रोग्राम जो मैं सुन रहा हूँ इस वक्त जो है हमारे साथियों, तो आपके यहाँ से और घर की तरफ मैं देख रहा हूँ 3:04 हो चला है, 3:04, तो मतलब यही है कॉमर्शियल्स सुनेंगे, विज्ञापन आप सुनेंगे, और आगे आगे जैसे प्रोग्राम रहेगा आप सुनते रहना। इमाखवीत 2 बजे के बाद में ना त्वे उर रौली मोहन फनक्षुनाम रौली मोहन अक्टुअलिटी से लेकर आपके लिए उपस्थित रहेगा प्रति शनिवार की तरह।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: मतलब ही लोगों के ये 5 लक्षण। पहला, मतलब ही लोग हमेशा दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं, जब अपना मौका आता है तो कंजूस हो जाते हैं। दूसरा, मतलब ही लोग हमेशा आपको तभी याद करते हैं जब उनको अपना काम होता है। तीसरा, मतलब ही लोग काम निकल जाने के बाद कभी आपको याद नहीं करते और ना ही कभी आपका हाल पूछते हैं। चौथा, मतलब ही लोग हर बात में पहले अपना फायदा और नुकसान देखते हैं। पांचवा, मतलब ही लोग कभी भी आपकी परेशानी के समय में आपका साथ नहीं देते और सबसे पहले आपको छोड़कर चले जाते।
8: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की माँ को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
9: जिन्हें आप अपना दर्द बड़े भरोसे से सुनाते।

वो अजीज अजीब दस्तूर है, जो सामने सच बोलता है वो बदतमीज, और जो कान भरता है वो अजीज। अजीब दस्तूर है, जो सामने सच बोलता है वो बदतमीज, और जो कान भरता है वो अजीज।

हमारे साथियों, ये प्रोग्राम फाहुन के आप सुन रहे हो, फाहुन घिनुसारी रेडियो के दोपहर के प्रोग्राम हलफ तुवे हो चला है, हलफ तुवे हो चला है। और दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जी और सुनाम से एक्चुअलिटी अपना विचारधारा यानी कि और कमेंटार प्रस्तुत करेंगे और सुनाम के हालात राजनीति के क्षेत्र पर। और हमेशा प्रति शनिवार को इनके प्रोग्राम जो दो और तीन के दरमियान हो रहता है, तो इसी तरह से आज भी। और लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिन दो लोगों ने फ़ोन किया है, ज़रूर आएगा भैया और आप चुन रहो और इसी फाहुन पर, तो अभी आप सुनेंगे अवश्य जाकर जो है श्रीमान रोली मोहन को। फिर हाल फिर क्या मोहब्बत तुम्ही से थी, मोहब्बत तुम्ही से है, मोहब्बत तुम्ही से रहेगी। जिस दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म हो गई, उस दिन मोहब्बत से मोहब्बत, साथियों उस दिन मोहब्बत से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, क्योंकि

से तीन लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकता। नंबर एक, जो खुद बदतमीजी से बात करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। नंबर दो, जो सच्चाई जाने बिना सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। नंबर तीन, जो खुद गलत होते हुए भी मुझे ज्ञान देते हैं जबकि जरूरत है कि पहले अपने गिरेबान में झांके। मैं ऐसे तीन लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकता। नंबर एक, जो खुद बदतमीजी से बात करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। नंबर दो, जो सच्चाई जाने बिना सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। नंबर तीन, जो खुद गलत होते हुए भी मुझे ज्ञान देते हैं जबकि जरूरत है कि पहले अपने गिरेबान में झांके।

हमारी साथियों और नेक ऊपर हल्फ टुई हो चला है नेक ऊपर हल्फ टुई और प्रोग्राम आप सुन रहे हो आप ही की स्टेशन जनता के आवाज़ है पाहुन शनिवार के दोपहर है और आज के कार्यक्रम टुई आपके लिए ये कार्यक्रम लाइव मैं आपका सेवक शाम पूरे अभी आपके साथ दे रहा हूँ और

में तो हमेशा अवश्य आप बतला सकते हो। द मोखलखेत बस्तात दारतू हमारी बेस्ट सुनने वालों, और ज़रा सी कुछ न कुछ जो मुझे अच्छा लगता है न, अच्छा तो मुझको लगता है आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए तो प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ ज़रा से और ये सुनाना है आपको, यही सोचते हुए कि आपको पसंद आएगा। हमारे दोस्तों ये तो कहावतें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और यही सोच रहा हूँ कि आपको पसंद आता हुआ होगा ना। ना सुबत वैसे मुतरम फरान इन ओन से प्रोग्राम मखियालते जख और बतिया सकते हो, क्योंकि परिवर्तन तो होना चाहिए हर एक कोत का, ओन मोखल के हर एक की जो है आपको अच्छा लगता होगा ना हमारे ये साथियों। तो यहाँ एक नंबर है आप ही के गुजारिश पर मैं प्रस्तुत जो करने जा रहा हूँ, चल के साथ में सुनते हैं।

या बड़े भैया जो है जाकर रोबी उदित राम की आवाज में। और ये कार्यक्रम में आज के ये दोपहर के प्रोग्राम में सुने फाहून के माध्यम से हमारे साथियों हैं भैया जो है कुलेखा, जहाँ भी आप खुशहाल हो भैया। और जाकर जो है सुरेन भगवान दीन और भी प्रोग्राम सुने उनके तरफ से आज के ये शाम के प्रोग्राम में। शाम नहीं दोस्तों, दोपहर है, अभी शाम आने वाला है ना, तो यहाँ उनके तरफ से उनके धर्म पत्नी परिवार की तरफ से आपको एक शुभ वीकेंड हमारे भैया जो जाकर कुलेखा और जो है जाकर सुरेन भगवान दीन और भैया दिल परमा दीन भी प्रोग्राम सुन रहे। दिलप डंक वेल और अभी आपके नाम जरूर से एक नंबर पेशाल नाम है दिलप रामा दीन अल्स हमारे साथियों हर एक को शुभ वीकेंड कहते हैं। चल के सुनते हैं नया पुराना नए नख में जो होता है दोस्तों गीत गजल और जाकर इन दिनों की आज क्या संगीत जो है अलहदा है ना, फिर भी संगीत तो संगीत होता है। और चल के ये सुनाता हूँ मैं आज इस वक्त इस पल इस घड़ी और जो है मांग कर बैठे मेरे भैया दिल प्रथम दिन

hit station, the music station. Fahun saathiyon. Nojawan film ka naam hai. Ek film 1951 ki. Thoda waqt guzar gaya hai phir bhi. ऐसा ही लग रहा है जैसे ये नगमा हम आज इस तरफ से पहला बार सुन रहे हैं. अच्छा लग रहा है.

बरसात का मौसम धीरे धीरे तापमान के अनुसार इसी तरह से आज के मौसम भी है ना। ना गर्म ना ठंडा, बीच में

mooi weekend, beste mensen. Ja. Waar is dat, joh? Het is zo 10 minuten voor oude twijfeltje lage. Heb ik goed gekregen daarmee. Zo'n enke op Sermaan Rajkumar Rolimohan. Zo'n naam is ze. Oud samatjaar. Aapko oude actualiteit. Jo prestoot kregen. Prati saniwaar ke tere. Elke zaterdag onke program. Do oude team ke dermiaan. Dan heet hij maar zaterdag. To aan je bij rega. Nu hier aapse kata hoon. Karikram aapse de Irene. Oude Ram Khelawan ji. Onke taraf se aapko bhi. Ek shubh din. Ye Devi ji. Onke bade behen. Panita jo hai. Onse abhi आप कार्यक्रम में जो है शुभ संदेश सुने धार्मिक प्रोग्राम था और आर्य समाज से जो जुड़ा हुआ है चार वेद न और वैदिक सनातन धर्म के ओर से अपनी जो धर्म प्रचार कर रहे इंसान के नाते जो है अपनी कर्तव्य कर रहे निभा रहे हैं जो आपको भी करना चाहिए अगर आप चाहे तो हमारे साथियों समाज में आकर समाज सेवा करते चलो किसी के काम आते चलो यही हमारी धर्म ये सनातन धर्म जो वो देवी जी बतलाए श्रीमती साहेब दीन जी तो वही राह पे आप भी कोशिश करो चलने के लिए छोटी बहन इरीने कार्यक्रम सुन रहे भी और उनकी तरफ से उनकी समस्त परिवार पति श्री और समस्त परिवार बाल बच्चों के नाती पोता सबके तरफ से आपको एक शुभ दिन भैया चांद रघुनाथ भी प्रोग्राम सुने हमारे साथियों उनके तरफ से भी एक शुभ दिन सुरेन भगवान दीन को लिखा है और उनकी आवाज जरा से सुन ले और यहां से एफएस में है सामत सुरेन भगवान दीन

प्रयन भगवान दिन हमारे साथियों, आज दोपहर के प्रोग्राम में वीकेंड के कार्यक्रम में अरे कोई जो साथ दिए फोन किए डंकुवेला स्ट्रक्स है वो रॉली मोहन।

प्रोग्राम है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के। शनिवार का दिन है और प्रति शनिवार के साथ रात के जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपको मालूम है श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जी सुनाम से और एक्चुअलिटी अपने समाचार जो है खास करके प्रस्तुत करता है और अपने अंदाज में लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त इस घड़ी और अभी कुछ घड़ी के अंदर में उनकी आवाज़ ज़रूर अवश्य आपके सुनेंगे हमारी प्रिय मित्रों और दोस्तों। चल के सुनते हैं यूँ ही एक हाथ उमदते कथा अपनी वेर तहर हाल मैं वक्त रोपे खुद फिर भी ज़रा से और ये

साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के। ये दोपहर के प्रोग्राम है और शाम जो है, शाम तो है, शाम अभी आने वाला है। हमारे साथियों में रॉडी मोहन सुनाम से और ये आपको सुनाइए हर तक खबर खड़ी की तरफ। वही देख रहा हूँ, 12 मिनट बाकी है जबकि 3 बजने में

साथियों, और जो है ये शाम दोपहर के प्रोग्राम में शनिवार की है, तुवेई मई तुवेई दर्शन ते सेशन तुवेन तक की।

0: तो हमारी साथियों, ये शाम कहाँ दोपहर के प्रोग्राम आप सुन रहे हो, और जहाँ आशिनी जी की आवाज़ में ये नंबर आप श्रवण किए। हमारी मित्रों, जैसा आपको मालूम है, तारीख आज है 2 तारीख मई 2020, और सेशन 20 ने कई बार मैंने बोल चुका, फिर भी वक्त घड़ी जो गया तो गया, वो आने वाला फिर ना आए, जो है चल गया, यही है जिंदगी। और इसी तरह से अपना जिंदगी जो हम जीते हैं, तो जाकर समझ बूझ कर, हजार बार सोच कर, एक पांव, एक एक घड़ी, एक एक पल जो है, बहुत सोच समझ कर जिंदगी जीते चलो, किसी के काम आते चलो। हमारी धर्म जो सिखाता है, हम लोग धर्म जो पालन करते हैं तो सिखाता है, और परंपरा जैसे हम लोग माई बाप से सीखे हैं, परंपरा बतलाता है कैसे हम लोग की जीना चाहिए हम लोग के। और जाकर ग्रंथों, आज बातचीत हो रहा था उसके बारे में ना, ग्रंथ जो हमारे लोग के है उसे हम लोग सीखते जानते हैं, और माता पिता जहाँ तक होते हैं तो वो तो परंपरा है हमारे साथियों, उसे बतलाते हैं कैसे जीना चाहिए, उसी कोशिश करो जीने के लिए। क्या खबीते शुरू कहेंगे माखब, लोग कहते क्या लेके आए, क्या लेके जाना, वैसे वैसे लेकर जो आए तकदीर में जो लिखा था, और लेकर जाएं जो कर्म करेंगे, तो कोशिश करो सही कर्म करने के लिए। आपको ज्ञान है, बुद्धि है, और यहाँ मेरे साथ यहाँ बैठा एक मेरा प्रिय मित्र दोस्त जो है, कैसे नाम हुआ है आपके?
1: खुशियाल
0: भैया, राज खुशियाल जी, काफ़ी दिनों के बाद भेंट भैले, और एक मित्र है, और जिसे अच्छे से परिचय है, जान पहचान है, तो वो यहाँ जो बैठा हुआ है, और उसकी कोई ख्वाहिश है हमारे साथियों, उनकी ख्वाहिश है, और उनकी ख्वाहिश ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं पूरा करने के लिए। एक नामा, एक गीत वो सुनना चाहते हैं, हमारे मशहूर गायक, यानी कि वो ही कलाकार होते हैं ना, कलाकार कला छोड़ के चला जाता है, और कलाकार मरते नहीं हैं दोस्तों, यू ही मैं हमेशा कहता हूँ। और यहाँ जो हमारे भैया बैठा है मेरे सामने, भैया राज खुशियाल जी, उनकी एक ख्वाहिश है तो वैंस एक नंबर चुनना चाहते हैं। महान गायक, महान गायक, गायक एक आता है दूसरा नहीं होता, निमान कान मुकेश ना आप बेस्ट मैन से, मुकेश जी द हार्ट ऑफ मिलियंस के निमान कान ना आप, जैसे वो गाय से वही आवाज़ में खाली वही गाय सके है, कितना लाख कोशिश लोग करेंगे फिर भी निमान कान मुकेश से बेस्ट मैन से। तो आज जो है उनकी और वॉइस एक नंबर सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज़ में, मैं बहुत ही प्यार के साथ श्रीमान राज खुशियाल के नाम और जो है चलाने जा रहा हूँ। चल के साथ में मिल के सुनते हैं क्या वो सुनना चाहते हैं। आज का दिन, आज ये तारीख जो है 2 मई 2020 के दोपहर में, भैया राज खुशियाल, चल के सुनते हैं।

तो मेरे साथियों, ये नंबर जो है खास करके हमारे प्रिय मित्र दोस्त जो है श्रीमान राज खुशियाल के नाम या उन्हीं के नाम से

0: दे हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी की आवाज में ये नंबर आप श्रवण के हमारी साथी हूँ, जबकि आज के कार्यक्रम में ये नंबर प्रस्तुत किया गया हमारी प्रिय मित्र दोस्त जो है खास करके भैया राज खुशियाल के नाम जो है उन्हीं के नाम से, और बहुत ही प्यार के साथ और एक शुभ दिन कहते हुए फेन वीकेंड कहते हुए उन्हीं के नाम से ये नंबर चलाया गया दोस्तों। भैया राज खुशियाल यही मैं सोचा है, भैया खुशियाल तो यही उनके नाम जो है तो खुश होगा यही हम सोचते हैं। हमारे साथियों घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूँ, इस वक्त विलम्ब थोड़ा हो गया है, तेसाल ऊपर तेईस इंतु से व्यस्त में से फिर ऊपर दरी, फिर भी चल के सुनते हैं और कॉमर्शियल्स उसके बाद में आगे के कार्यक्रम जैसे रहता रहेगा तो मैं आपको सुनाता चलूँगा। फिर भी अभी कोशिश है श्रीमान जो है और डॉक्टर सुनाम से आने इन दिनों जब निधन हो गया है फिगापी के सभापति के, तो दोस्तों कोई तो उनकी जगह लेना चाहिए ना, तो डॉक्टर और देव शर्मा से कुछ कोशिश करेंगे बात करेंगे, अगर कॉन्टैक्ट हो जाए तो voor een week zou het wel gaan gebeuren, maar ja, jammer, hij had geen tijd. Hij heeft andere verplichtingen. Is hij Karen? Nee, hoe heb je het? Als koosjes heb ik gekregen, kun je ons poetsen en kleden, betalen en kleden, kia, hem dan zei, kia, hoe raar, wat de ontwikkelingen, nieuwste ontwikkelingen zijn, ki, kon, hoga, aan de wali dinome, nou ja, sabhapati, via peki, hem er staat hier.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
0: Digitale radio. VahonFM.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
0: Digitaal radio. Internet VahonFM.nl.
5: Ahankar zaten aasman per poncha hota hai. किसी की माँ को गाली देने की हिम्मत आती है भाई, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
6: अजीब दस्तूर है, जो सामने सच बोलता है वो बदतमीज, और जो कान भरता है वो अजीज।
7: मैं ऐसे तीन लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकता। नंबर एक, जो खुद बदतमीजी से बात करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। नंबर दो, जो सच्चाई जाने बिना सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। नंबर तीन, जो खुद गलत होते हुए भी मुझे ज्ञान देते हैं, जबकि जरूरत है कि पहले अपने गिरेबान में झांके।
0: तो हमारी प्रिय साथियों, ये शाम है और आप साथ हो, खुशी की बात है आपके साथ मिल रहा है ये शाम के प्रोग्राम में। और जैसे मैंने अभी बताया, हमारे भाई जैसा है भैया जो जाकर खुशियाल भैया है साथ एक और सा नंबर उनकी दोस्तों मेरे दोस्तों जैसे भी हो के नाम आज के प्रोग्राम में। और यहाँ मैं जो आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ तो नाम से मने खुशियाल जो है नमुआ कैसे रहा आपके फिर से भैया राज खुशियाल की तरफ से जितने दोस्तों हैं उनके मित्रों के लिए और ख़ास करके आज के प्रोग्राम में इस पल इस घड़ी नाम से मने राज खुशियाल के नाम से

या बेस्ट और सुनने वालों हमारे साथियों आपको शुभ वीकेंड फाइन वीकेंड है। दोपहर के कार्यक्रम में ये नंबर आप सर्वंती है एक दोस्त जो दूसरे दोस्त के लिए और चलाए ये नंबर और आज के कार्यक्रम में फॉर्म के माध्यम से भैया बात खुशी आल की तरफ से इतने सब मित्रों के नाम हमारी दोस्तों और एक और सा नंबर उन्हीं के नाम से फिर से

0: station. Het station, de music station, zo hij van hun Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Fahun.
3: Digitaal radio. Internet fahunfm.nl.
0: हाँ तो दोस्तों ये प्रोग्राम जैसे मैंने अभी आपसे कहा ये कार्यक्रम आप चुने आप ही के नाम से जो चल रहा है कहता हूँ आपसे और ज़रूर से शहर के कोई ये जिस तरह से साथ दे रहे हैं मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया हृदय से धन्यवाद प्यार भी तू दोस्त भी तू एक भी तू हजार भी तू हाँ अजमी जी प्यार भी तू दोस्त भी तू एक भी तू हजार भी तू गुस्सा भी तू माफी भी तू मेरे इस जिंदगी का सफर में काफी है तू यही बतलाना था नहीं यानी जी आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो है यहाँ कार्यक्रम में आगे कहाँ आगे
4: Only on Eros Now.

बेस्ट मैन सफा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में ये नंबर अभी आप सुने और जो है एक और सर नंबर यहीं पर मैंने चुन रखा हूँ, एक ही दम मैं आपके लिए चलाना चाहता हूँ लेकिन जरूर। और जो है तो यहाँ से ये खास सिलेक्शन जो है

भिखारी के लिए आप दरियाप्त कर सकते हो पाहुन फ्री आलखमीन हिंदू उमरूप नीला तारक नंबर 073-62-20-77। सोच रहा हूँ इस नंबर जो है हम आपके लिए प्रस्तुत करें, आप इसे गौर से सुन रहे हो। यह कार्यक्रम जो है आप ही के नाम से चला रहा हूँ और आप ही की गुजारिश पर यह नंबर जो है चला रहा हूँ ना, और हमारी बेस्ट मैन से मुकेश जी का आवाज है, द हार्ट रॉप ऑफ मिलियंस, दिल चुराने वाली, हजारों लाखों करोड़ों की दिल चुराने वाली की आवाज है।

हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं, और क्या करें। आप ही बतलाइए, ये कार्यक्रम जो है इस बार नंबर जो मैं आप ही के लिए चुन रखा हूँ।

भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूटे, हाँ एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर अगर ये जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। दोस्तों आप जानते हो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी के घड़ियां है, पल है जो ज़िंदगी में बीता है, बीते हैं तो उसे हम नहीं और भुला पाते हैं, ज़िंदगी जीते रहते हैं। जो जिसके तकदीर किस्मत और नसीब में लिखा हुआ होता है वही मिलता है ना।

आवाज में, शब्दों में क्या एहसास आपको होता है? दर्द ही दर्द, किसी को जानबूझकर नहीं देना, नहीं देना और दुख दर्द ये जो है प्यार में मिलता है। लोग जिंदगी जीते रहते हैं ना, जो देते हैं जानबूझकर, क्या उसे सुकून मिलता होगा? यही मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं।

है इसी जिंदगी में ऐसा ऐसा हादसा मैं कहूँ या क्या कहूँ, शब्दों जो मुझे जुमा से निकलने वाला है, जो मेरे जहन में है वो कहना चाहता हूँ कि यही है कि दुआ मांगते रहो अजनबी जी, दुआ मांगते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है, रब के लिए तो कुछ भी ना मुमकिन नहीं। और हमारी यानी जी भी प्रोग्राम सुन रहे आपके पति देव के, और जो है ये मांग था तो यानी ये आपके पति देव के नाम से ये प्रस्तुत किया गया, खास करके ये नंबर जो है आप सुने। और आगे में चलकर इस बार नंबर जो मैंने आपके लिए चलाने वाला हूँ, हर एक को एक शुभ दिन कहते हुए बदनाम करते हैं लोग मुझे, जिसके नाम से बदनाम करते हैं लोग मुझे, जिसके नाम से कसम खुदा की कसम खुदा की, मन भर के कभी उसके देखा भी नहीं, यकीन करो। और ये सुन लो जरा से।

साथियों, ये गजल है आज का दिन, फैन वीकेंड है ना हो या बेगम, ये द्वितारित में ही और नहीं एक ये गया तो गया।

और हमारे प्रिय मित्रों मफ्रौ उसी खुदा बख्श डंक वेल फॉर योर अटेंशन हर कोई जो जिस तरह से हमारी तारीफ जो करता है प्रोग्राम में, मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कहना मेरा यह है मफ्रौ खास करके उसी खुदा बख्श से ब्लाइफ सीखो नहीं तो ऊक, जो शख्स इतनी मोहब्बत की बात जरा से सुन लो, शेर शायरी होता है जब गीत गजल चलाता हूँ मैं तो यूं ही आदत सी पड़ गई है, मैं बार बार ये कहता चलता हूँ कि जो शख्स इतनी मोहब्बत के बाद भी आपकी नहीं हुआ तो यकीन मानो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। यूं ही शेर शायरी है और ख़ास करके जो गीत गजल मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, और फिर से एक बार जो है आप जो तारीफ़ करते हो बोलते हो और ख़ास करके हौसला बढ़ाते हो तो धन्यवाद फिर से मुफ्रौ उर्सी जी।

0: en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitaal radio, internet vahonfm.nl.
6: Teri yaadon ko bhala dil se bhulaun kaise? Teri yaadon ko bhala dil se bhulaun kaise? Dil to hai ek pyar, nahi milte to sunate kaise? Mera man, mera tan, mera jeevan. मेरा मन मेरा तन मेरा जीवन समाज की छाया है मेरे पास कुछ भी नहीं अपना मेरे पास कुछ भी नहीं अपना जो भी है आप ही से पाया है मैं कहां कुछ कर पाता मैं कहां कुछ कर पाता यदि आप सबका प्यार न मिलते आपकी याद में रहकर बिगड़ी भी बन जाते हैं ये जो समाज है स्वराज्य है हमारा मैं रहूं ना रहूं तुम सब करते रहना सहारा प्यारे समाज सेवकों कुछ देना है तो वचन देना आप वचन देंगे बोलो मेरे समाज सेवकों कुछ देना है तो वचन देना आपने घर समाज और देश में प्यार से रहने का वचन देना आज से इस समाज में लड़ाई झगड़ा बंद। बलों के बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है, वो आके भी गुजर जाती है। गम बहुत है प्यार भारी, गम बहुत है प्यार भारी है, और यही है जिंदगी हमारी। खेल का भी तो है अपना नशा, खेल का तो भी है अपना नशा, हमने बाजी जीत कर खुशी से हारी है। मिलो तो फूलों की तरह, बिछड़ो तो सुगंध की तरह। अंकुतलकार असब्लूमन एंड नेम ऑफ सैदा स्क्वेयर। धन्यवाद।
7: बेस्ट मैंसे ये छा अखंड विद्वान श्री पूज्य पंडित दाता दीन, ये शुभ संदेश वो जो समाज सेवक है, अपना धर्म के प्रचार करता है, अपना कर्तव्य अपना धर्म निभाता है, और यही संदेश दिया कि ऐसा ही कुछ आप करते चलो और उसे से जरूर से आपके भी और समाज के भी कल्याण होगा।

आपका अपना नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो फाहम, मैं हूँ आपका दोस्त रजेश। आप सबको हृदय से स्वागत। आज शनिवार 2 तारीख नए हो चला है और आप सबको एक बार और जहाँ आप भी हो जिस हाल में आप हो

जहां भी हो, जिस हाल में आप हो, मस्ती लाते हैं आपकी ओर और ऐसे ऐसे गाने लेकर मैं उपस्थित हूं आप सभी के सेवा में।

तो चलते हैं सूरीनाम के ओर और सूरीनाम में आप जानते हैं कि हमारे जो निकेरी है वेस्टर्न में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट निकेरी, तो उस पर एक नया गीत बनाया गया है, गाया गया है, तो आपको मैं सुना देता हूँ। ध्यान से सुनिए और अर्थ जरूर आप ध्यान में धारें।

जब आसमान शंकाओं से गहराता है तब भी तुम्हारा उजाला जलता रहता है। जब मशीनें शाम को चुप हो जाती हैं, हम हाथ अपनी भाषा बोलते हैं। हवा और पक्षियों के गीत के बीच तुम हर दिन फिर से अनेक लोगों की समृद्धि बिना शोर कर

0: इनमिक्स एंड रिमिक्स, आप जैसा कोई, यानी कि आप जैसा कोई कहीं नहीं,
1: तो बात बन जाए।
0: और तब बात भी बन जाते हैं।

तो जबकि बात बन जाए तो अगला गीत आप सुन लीजिए। तो क्या होते हैं, सभी के जुबान पे आते हैं एक ही बात, एक ही बात आप सुन लीजिए। आजकल प्यार के चर्चे होते हैं,

non-stop Hangama Music or Jimmy in the Mix and the Remix. जबरदस्त गाना है, आपके दिल आपके हृदय खुशी लाने के लिए बुलाते हैं जिमी को.

शनिवार अनाउंसर डीजे राजेश, आप सबको हार्दिक से स्वागत है। राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हरिओम, हरि बोल। और आज भी मेरा मौका है आप सबके मस्ती और मनोरंजन पहुंचाने के लिए। जहां तक मेरा आवाज पहुंचते हैं इस वक्त, यानी कि दुनिया भर में आप चून हो जाइए इंटरनेट रेडियो पर फाहोन एफएम पेंटेनल, या तो देयाबी प्लस रेडियो पर, यानी कि आजकल के रेडियो वही हैं। और हाँ, शुभ रात्रि कहते हुए प्रोग्राम को यहां से जारी करेंगे और जुड़ जाइए, मिल जाइए मेरे साथ।

तो रैंडम सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते इसे खोजबीन कर लाए हैं और आपको पता होना चाहिए कि जबकि आज के मौसम ऐसे है, इस वक्त मुझे लगता है 22 डिग्री है, 22 ग्राद, तो कुछ न्यूएस्ट मिक्सेस और रिमिक्सेस आप सभी के वास्ते चल रहा है।

और इसे मेरा दीवानगी आप सबके नाम पर चला है, धुंधे मेरी दीवाना ऐसे बात है। आप सबको एक बार और हार्दिक से स्वागत है हमारा हिस्सा प्रोग्राम में। और ऐसे ऐसे गाने चलने वाला है, यानी कि सबसे मस्त भरी गाने, द लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट, कुछ हंगामा सॉन्ग्स एट दिस वीकेंड बेस्ट मेंस। हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल, हैप्पी सैटरडे।

voor iedereen wat wil. चटनी बैठक, बैठक में तो हम चटनी

wait, hold it, that's played out. Hit it. सुरिनम स्टाइल मिक्सेस और रिमिक्सेस इस वक्त चल रहा है, झूलना झुलावे रमेश चंद्र बिहारी।

The Master Blaster, ऐसे आप सबको सुनाए हैं बैठक गाना मेडली, और गाने वाला था देखते हैं बैठक गाना मेडली बाय मास्टर ब्लास्टर, और मास्टर ब्लास्टर ऐसे मिक्स और रिमिक्स किए हैं रमेश चंद्र बिहारी, ऐसे आपको सुनाए हैं। कंगनवा चुरावे और ये भी एक रिमिक्स सीडी से निकालते हैं, और साल 2008 से निकालते हैं।

0: Vahon Hindustani Radio.
1: अधिकतर कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: दोस्तों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूं, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ. एंड फिल्म ललकार 1970 कंपोज बाय ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं. शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी. क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा. जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है. इसलिए हम लोग आप सभी से यहाँ से सदियों से यही कहते आ रहे हैं कि हम त्यू नष्ट आओते लीफ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो. खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है. तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम. साप्ताहिक कार्यक्रम है ये, कुछ सुंदर सुंदर बैठक गाना और उसके बाद कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, बाद में कुछ नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुनेंगे. बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे. रफ़ी साहब

शाबाश महान गायक हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे ऑलैंड देश का जो काफी बार सुरीनाम देश अपना प्रोग्राम दे चुका है और लोग बहुत ही पसंद करते हैं, द लायन ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड उस्तादों का उस्ताद देवेंद्र सिंह सुनात सोशली अल मलवेट एस ओक फन अल मार्क्त टाइस जब कोई बात

The Lion of Bait Ghana from Holland. The great Davinder Singh Shivnath. अगला बयान एक बहुत ही जबरदस्त गाने वाली है हमारे सूरीनाम देश का यार सीफन तख्तख का मफ्रौ राम दुलारी चुनी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश की मफ्राओ राम दुलारी चुनी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान कोरस के साथ आप श्रोताओं ने सुना। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो है जोर तोड़ से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंडिस का जो काफी बार सुरीनाम देश में भी अपना प्रोग्राम कर चुका है, द किंग ऑफ बैठक गाना अनंत भजन जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते कि भौजिया तो बहनिया कुछ ना कुछ करे ना।

bijtek Ghana from Rotterdam. Maestro Anand Bhajan ji ke beautiful awaaz mein ye sundar bayan aap shrotaon ne suna. अगला बयान है, तू जाओ कहाँ राजा, बोले मोहरिया राय नोमुसुगे. और वो सुनाती है आप सभी को सुरिनाम देश का एक और मशहूर गाने वाली बैठक गाना का उस्तादीन चंद्रवती कंधाई.

एकदम शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो राजू सिंह गुलाम। एक और जबरदस्त नगमा आप सुनेंगे, खास करके बहुत ही चला था uit de jaren 1980 from the music formatie Ishara. Aur sunan ke ja rahe hai aap sabhi ko mashhoor gaane wali uit de jaren 80 90 2000 the great Indra Ram Charan ji ke beautiful super hit song aap sunenge ki Silwa ke Mai.

Shabash, shabash, jaar 1980, kaye super hit song. Indra Ram Charanji ke beautiful awaaz mein music by Ishara. तो हमारे दोस्तों आज का इस हसीन कार्यक्रम प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं इस सरनामी संगीत का एक आखिरी सॉन्ग आप सुनेंगे और एक जबरदस्त महान गायक हमारे सुरीनाम देश और हॉलैंड देश का हर एक नया नया सिंगर्स जो इस बैठक गाना या हमारे सरनामी स्टाइल गाने को चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस महान उस्ताद का नाम जरूर ले लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी और ढेर काम नहीं किया है, बहुत ही कम उम्र में भगवान को प्यारे हो गए लेकिन जितना बनाया है तारीफ़े काबिल और फन बिसोंद्र खुई क्वालिटी उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का एक महागुरु जगदीश प्रसाद उदित राम, रॉबी उदित राम जी का बड़ा भाई।

उस्ताद महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का द किंग ऑफ बैठक गाना लेतरलक द किंग ऑफ बैठक गाना महा महा गुरु जगदीश प्रसाद उदित राम। हमारे भी प्रिय श्रोताओं यही तक था हमारे पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। आना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बतंगठोर हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबल या इंटरनेट के लहरों द्वारा fahun.fm.nl पर यह कार्यक्रम आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 7 van maandag tot vrijdag. Bellen tijdens kantooruren van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें हो जरूरी खबरें या तो अपने व्यापारी के बारे में या तो अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर और अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर जरूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। सभी जानकारी 9 सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है अब मात पर हम लोग बनाकर बंधु और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे भैया, और वो भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ यारों कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को ऑनलाइन डेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख न्यूज़ पर आप तार करें। तो जो भी रेडियो का काम हो डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, बातें शातें करते रहना। इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तैयार करें अपने 7 3 6 2 2 7 4 दफ्तर का तार का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7। आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने, औरों को भी कोशिश करने के लिए और जरूर औरों को भी बनाए ना किफायत सस्ते दाम में, और आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। तो यारो वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, और वो होता है हमारे सुरिनम इंडियन पॉप म्यूजिक। हमारे सरनाम और हॉलैंडेस के कुछ कलाकारें तो मिलके सुनते हैं। एक जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश का फारिस बरसाती का बिल्कुल नया सॉन्ग है जिंदगी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का जो इस वक्त गा रहे हैं, अन टॉप फरमासी एट सूरीनाम द स्टार्स के लिए। उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, रिमेंबर द नेम फारिस बरसाती। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का जो काफी मशहूर है दुनिया भर में, क्योंकि वन ऑफ हर सॉन्ग तकरीबन 5 मिलियन व्यू से ज्यादा लाइक्स पा चुके हैं। एंड फॉर सूरीनाम्स आर्टिस्ट इज दैट हेल फेल और तारीफ काबिल द ग्रेट निशा मदारन का बिल्कुल नया सॉन्ग तुम बिन।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को हमारे सरनाम देश का जबरदस्त गाने वाली द ग्रेट निशा मदारन जी तुम बिन। म्यूजिक अरेंज कंपोज बाय देवन बीट्स। अगला बयान एक जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का जो आजकल हॉलैंड देश में एक प्रोजेक्ट के लिए आया है और प्यार से लोग उसे मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम के नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट कविश कालका के ब्यूटीफुल सॉन्ग इल्जाम। जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का।

क्या बात है मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम कविश कालका का बिल्कुल नया सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का, इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सूरीनाम एंड हॉलैंड। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का, द बैठक गाना क्वीन, द चटनी क्वीन, क्या क्या टाइटल्स नहीं पा चुकी है ये महान गाने वाली, द ग्रेट मोतीमाला भोला सिंह, तेरा साया, म्यूजिक बाय मैस्त्रो ज्वाला।

मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश का द बैठ गाना क्वीन एंड चटनी क्वीन, क्या क्या नहीं बोलाते हैं लोग ये महान गाने वाली को, द ग्रेट मोतीमाला भोला सिंह, और म्यूजिक सजाया रचाया है यारों का यार जिगरी दोस्त मैस्ट्रो ज्वाला। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को कुछ नौजवान कलाकारों हमारे सुरिनाम देश का मिलके बनाया है, और खास करके इस जमाने का द बैंड लीडर फ्रॉम द सक्सेसफुल म्यूजिक फॉर्मेशन हमारे सुरिनाम देश का द स्टार्स का बैंड लीडर महान गायक सुरिनाम देश का द ग्रेट जेमी राम बरन जी का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनेंगे, कंपोज एंड अरेंज बाय फारिस बरसाती, जो भी कुछ लफ्ज़े गाएंगे इस गाने में, और साथ भी दिया है शेरन राफनबर्ग और रायन अब्दुल अजीज। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि जेमी राम बरन ये मेरा जिगरी दोस्त यूथ फ्रेंड देव नारायण राम बरन जी का सुपुत्र है, जो मेरे साथ द म्यूजिक फॉर्मेशन द इंडियन गार्ड्स में गाता था, और द नेशनल नया जमाना ऑर्केस्ट्रा फ्रीडन ब्यूरो का, जिसे लोग लोरो बैंड के नाम से भी जानते थे, तो ये जेमी का फादर ये दोनों बैंड में हमारे साथ भी गाया करते थे और हमारा बचपन का साथी था। है वसन ब्लास्टिंग अंतनार एंड या हेलियम ऑफ लेडर। तो जेमी राम बरन को जो सिखाया है उसका पूज्य पिताजी संगीत के दुनिया में, तो आज वो जोर तोड़ से सुना रहे हैं सुरिनाम देश में, और काफ़ी बार हॉलैंड देश में भी आकर अपना प्रोग्राम दिया। द ग्रेट मैस्ट्रो जेमी राम बरन, डर्टी तरीका, जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए।

अग्रेई चौंग, क्या कलाकारे है, बाप रे बाप, हमारे सूरीनाम देश का देवती टड़ी का इस दे सॉन्ग नेम। और सुनाया है आप सभी को लीड सिंगर द ग्रेट जेमी रामबरन, साथ दे रही थी कुछ नौजवान कलाकारे हमारे सूरीनाम देश का, जो मिलकर ये नगमा को तैयार किए हैं। जेमी रामबरन, क्या बात है बेटा, साथ दिया है शैरन राफनबर्ग, रायन अब्दुल अजीज और मैस्ट्रो फारिस बरसाती। तो यारो वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारो कि कुदरत का बनाया चांद भी हजारों दाग लिए फिरता है, कुदरत का बनाया चांद भी हजारों दाग लिए फिरता है, फिर भी अपने हुस्न को हर रात बदलता है। क्या बात हुआ, गुजरा है मोहब्बत में कुछ ऐसा भी जमाना, गुजरा है मोहब्बत में कुछ ऐसा भी जमाना, रूठा हूं अगर मैं तो मनाया था किसी ने, मेरी मोहब्बत की ना सही, मेरी मोहब्बत की ना सही, सालिके की तो दाद दे, रोज तेरा जिगर करता हूं, रोज तेरा जिगर करता हूं बगैर तेरा नाम लिए। तन्हाई में रोने से भी दिल की आग नहीं बुझती, तन्हाई में रोने से भी दिल की आग नहीं बुझती, हैरान हो जाता हूं मेरे अश्कों की बारात कहां हो तुम। फरियाद कर रही है तरसती हुई निगाहें, फरियाद कर रही है तरसती हुई निगाहें, प्रेम देखे हुए, प्रेम देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। शायद कोई हीरा समझ के तराश ले मुझे, शायद कोई हीरा ही समझ के तराश ले मुझे, ये सोच कर मैं उम्र भर पत्थर बना रहा। तो आगे के प्रोग्राम में कुछ कोशिश करूंगा और सुनाने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का, मैस्ट्रो संजय जोधा जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को कश्मीर वादे इन द मिक्स विद दूरी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया हमारे हॉलैंडेस का जबरदस्त गायक मैस्ट्रो संजय जोधा जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और एक जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडेस का डिग्रेट लेडी संजना के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। द चटक मटक मिक्स भैया मिलके सुनते हैं तो जरा तीता है।

from Holland with his Indian Express, a beautiful song, the Chatak Madak Mix. Special आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडिस का from the Music Pharmacy Express. The great Mooka Singh जी के beautiful आवाज में आप सुनेंगे सारी दुनिया.

सी इंडियन एक्सप्रेस जबरदस्त गायक द ग्रेट मूका सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ब्लेसिंग माय बॉय। जबरदस्त गायक आप सुनने वाले हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ लेकिन अपना संगीत का शुरुआत किया इन द ईयर 90 विद म्यूजिक फरमाशी टू नेस्टी लीड बाय मैस्ट्रो ज्वाला द ग्रेट सागर मलिक जी के ब्यूटीफुल नया सॉन्ग तू है तो।

है शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाला हमारे हॉल इंडीज का मैस्ट्रो सागर मलिक के ब्यूटीफुल आवाज में लाइव म्यूजिक बाय शिक कस कवीना। अगला बयान आप सुनेंगे ब्रेक के बाद यारो, अभी आप देखा जाए तो यही तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो यारो जरूर स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये रेडियो स्टेशन है, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दरबार गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और अदर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला चू।
0: फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 4 से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुए। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नाट के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निखिल फिरन तख्तक में बना था, वो स्टेफन स्पीकलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी निहनी स्टीफन फेस्टिक में एर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश

फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग दोस्तों, एक ओल्ड सॉन्ग है और इसमें नया भी मिलाया गया है, खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कन्नड़ा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड

सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला एक अलहदा एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसने उफन करते थे। अमरीश पुरी इसे तो कहे अवार्ड भी पाया, निजी अख्तन शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1979 सीवन तक में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1987 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1991 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1997 तक में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1999 तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 तक के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 तक में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में। उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिला देविकार और बेटी राजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाइयों बहनों,
1: हाय हाय, सुनो सुनो भाइयों बहनों,
0: रे

फन हंड्रेड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: सपने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोपेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

0: हुई।
1: रात्रि कली तो वादा किया है, एक बार फिर ख्वाब में आने को दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा। रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदर ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है ये सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार किया। अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब you.

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न, तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बाया नेत्र नीचे को शुभ होता है, बाया नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछे भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहा सुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले, कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले, कंठ का ऊपरी भाग स्वर्णमाल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में। स्वप्न कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गयाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4, 5 तारीख का स्वपन 2 माह से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11, 12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13, 14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3, 4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5, 6 तारीख का स्वपन फल 2 माह से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8, 9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10, 11, 12, 13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है।

मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहोन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज का कार्यक्रम में हमारे और राजेंद्र जी और बबली जी जो यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो बबली जी आप अपने ओर से एंट्री कीजिए, फिर हम सब वही गीत की ओर बढ़ेंगे जो जिससे हम सब कार्यक्रम को हर बार शुरू करते हैं।
1: वक्त और अध्यापक दोनों हमें सिखाते हैं, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अध्यापक सिखाकर परीक्षा लेते हैं और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: तो जैसे कि आपने सुन चुके हैं कि बबली जी ने भी अपना एंट्री डाल दिए है और हम वही गीत की ओर बढ़ते हैं जिसे हम हर सप्ताह चलाते हैं। तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जिसका मन अभी उदास होगा तो ये गीत जरूर सुने और सुन करके और मन का उदासीपन जो है उसे हम दूर करते हैं, ताकि हम अभी जो आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में धमाकेदार संदेश लेकर हम आए हैं उसे हम आपके लिए जरूर प्रस्तुत कर सके। पहले हम तेरा राम जी करे बेड़ा पार।

0: राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे, ये गीत जो हरिओम सरन जी ने और अपने आवाज से हम सब के लिए, आज वो नहीं है फिर भी ये गीत जिंदगी भर जीवित रहेंगे और हर बार भी, खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में जो हम सब चलाते रहते हैं। बबली जी, जैसे कि आज का विषय रखा गया है, विषय का बोल, विषय जो है आज का, जिसका संदेश ये है कि भंडारा का महत्व, तो भंडारा किसको कहते हैं?
1: भंडारा जब हम पूजा पाठ अर्चना करते भगवान की, तो उसके बाद जो सबको प्रसाद दिया जाता है या भोजन खिलाया जाता है उसको भंडारा कहते हैं।
0: उसको भंडारा कहते हैं?
1: हाँ जी।
0: और ये भंडारा ऐसा, क्योंकि यहाँ होलांद देश में भी हम सब मंदिर आदि जाते हैं, और देखो अब समय जो ये 2 साल जिसमें महामारी ने अपना और खूब दिखाया, जैसे कि पहले मंदिर भरे रहते थे लगभग 150 लोगों से, तो अब उसके आधा से भी कम हो गए। उसमें कितने लोग जो हम लोग के साथ मिलकर के सत्संग करते थे, आज हम लोग के साथ भी नहीं हैं। और यहाँ ये हो जाता है कि क्या भंडारा अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आपके कुछ जानकारी है?
1: अभी धीरे धीरे लोग मंदिर आना शुरू है, तो शायद आगे में चल के भंडारा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता।
0: और ये बताइए कि भंडारा, जैसे हम लोग यहाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि भंडारा जब कोई भी कार्य करे, जैसे कि यज्ञ कराए या कोई यज्ञ, वैसे ऑफिशियल यज्ञ चाहे आप ना कराए, पर भंडारा लोग करवा सकते हैं ना?
1: करवाने को हाँ, अपना नाम, कई नाम देते हैं, कई नेते भंडारा करवा सकता है, लेकिन यज्ञ करके भंडारा करो तो उसमें सफलता और मिलती।
0: तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब, आज का विषय भंडारा है, उसके बारे में तो अभी तो बस कुछ ना कुछ ये संदेश की ओर हम लोग बढ़े नहीं हैं, पर उससे पहले हमारे विशेषज्ञ लोग जो हमारे लिए खोज करके रखे हुए रहते हैं, तो क्यों ना बबली जी पहले हम थोड़ा सा ये जो पहला संदेश है भंडारा के ओर बढ़ने से पहले, क्यों ना हम पहले अपने सभी सुनने वालों को उसका थोड़ा सा झलक सुना देते?
1: हाँ जी जरूर। इसका विषय कर्म।
0: कर्म यानी कि कर्म के साधारण रूप में कैसे, क्या कहते हैं कि जो हम करते हैं?
1: हाँ, इंसान जो कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं, तो कि इंसान जैसे कार्य करेगा वैसे उसको उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा।
0: जैसे करनी वैसे भरनी।
1: हाँ जी, ऐसे ही।
0: क्यों ना हम पहले गीत चला देते हैं?
1: जरूर।

0: का ज्ञान, ये गीत मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने।
1: हाँ जी।
0: इस फिल्म में अपना और कला से कौन प्रदर्शन लिए?
1: मनोज कुमार जी और हेमा मालिनी जी।
0: और ये बताइए कि मुकेश जी के और जो एक महान सिंगर थे और उसके बेटा भी कुछ गीतों को भी गाए हैं ना?
1: हाँ जी, मुकेश जी के बेटे हैं नितिन मुकेश।
0: नितिन मुकेश
1: और नितिन मुकेश के बेटे हैं नील नितिन मुकेश।
0: नील नितिन मुकेश, और वो गायक है या एक्टर है या कुछ क्या करते हैं?
1: वो एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, वो गायक नहीं बने।
0: नील नितिन मुकेश।
1: हाँ जी, मुकेश जी के पोते।
0: ऐसा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सुंदर गीत को सुने कि यह है गीता का ज्ञान, पर आज का विषय जो हमारा है भंडारा। भंडारा लोग क्यों कराते हैं, भंडारा करने से क्या फायदा है, और भंडारा और कितने प्रकार के किए जा सकता है, ये तो हम जानते हैं बबली जी, कि भंडारा में जब जाओ और कोई भी भंडारा करावे तो कम से कम लोग वहाँ जब उपस्थित हो जाते तो लोग वहाँ पर तिलक लगाते हैं ना?
1: हाँ जी,
0: तिलक लगाते हैं। पर अच्छा, अभी विषय की ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, भंडारा से पहले कुछ संदेश जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: भंडारे भी दो तरह के हैं, एक लंगर कहलाता है, एक भंडारा कहलाता है।
0: तो लंगर कहाँ पर कहलाते हैं?
1: सिखों में जो सरदार लोग हैं वो गुरुद्वारे में जो भोजन करवाते हैं उसको लंगर कहते हैं।
0: उसको कहते हैं लंगर।
1: हाँ जी, और जो मंदिर में लोग यज्ञ के बाद करवाते हैं उसको भंडारा कहते हैं।
0: ऐसा करवाते हैं कि हाँ, उसे भंडारा। और पर लंगर का एक विशेषता और है ना?
1: हाँ, लंगर है वो पंक्ति में बैठ के नीचे बैठ के खाया जाता है,
0: नीचे बैठ के खाया।
1: हाँ जी, पंक्ति में बैठ के भोजन किया जाता है।
0: पंक्ति में बैठकर भोजन किया जाता है।
1: हाँ जी, और जो भंडारा है उसमें जब यज्ञ के बाद प्रसाद देते हैं तो सब लोगों को बांटा जाता है।
0: और ख़ास करके देखिए, बात यह है क्योंकि आज का विषय जो हमारे विशेषज्ञ लोग रख दिए हैं, तो जैसे कि ये कोरोना ये महामारी आया है तो अब कुछ कुछ बदलाव भी आने वाला है, कुछ कुछ बदलाव हो चुके हैं। और कुछ मंदिरों में ऐसा हो गया है कि वहाँ पर जैसे कि बैठ के लोग आराम से और अपना भंडारा करते थे, अब ऐसा हो गया है कि लोग इन पैक कर देते हैं और उसे लेकर के आपके अपने घर पे जा कर के भोजन करना है। तो पता नहीं ये ठीक है या नहीं ठीक है, अभी तो हम सब इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, पर संदेश क्या है? और बबली जी, क्योंकि अभी हमारे जो खोजी सेना होते हैं, जो हमारे लिए हमारे विशेषज्ञों है जो हम सब के लिए तेमा को रखते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ और संदेश उसमें रख देते हैं ताकि हम सब अपने सभी सुनने वालों को, जो ये रेडियो फाहोन है 188 देशों तक ये सुना जा सकता है, और अन्य देशों में जो इस समय जो कार्यक्रम को सुनते हैं, तो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जो दनहाग शहर से न्यूटन स्ट्रीट 25 से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, आज का विषय जो भंडारा रखा गया है, और उस ओर बढ़ने से पहले जो विषय से पहले है तो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर, कर्म, जिसका विषय है कर्म। मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदायी रूप में होती है। मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तब यह सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को ही खाना आरम्भ कर देते हैं।
0: तो बबली जी, मादा बिच्छू यानी कि जो बिच्छू होते हैं ना?
1: हाँ जी,
0: जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियन
1: नर। हाँ जी,
0: मादा बिच्छू।
1: हाँ, नर और मादा, नर हुआ आदमी, मादा हुई औरत।
0: ओ ऐसा है।
1: हाँ जी,
0: तो ये यानी कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं।
1: हाँ जी, क्योंकि बच्चों को जन्म तो माँ ही देगी ना, मादा नर नहीं दे सकता था।
0: पर और क्या संदेश है?
1: और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं। वो तड़पती है और कराहती है लेकिन यह बच्चे पीछा नहीं छोड़ते, और यह बच्चे उसे पल भर में ही मार देते हैं, बल्कि कई दिनों तक मादा बिच्छू मौत से बदतर और असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है।
0: ये तो बड़ा आश्चर्य वाला बात है।
1: हाँ जी, क्योंकि बच्चे पल भर में नहीं मारते, उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं
0: बिच्छू का विशेष। दोस्तों, ये कार्यक्रम में हम एक सुंदर सा गीत जरूर इसमें जोड़ देते हैं, ताकि हम सब ये संदेश जो अभी बाकी है और आपके लिए रखने वाले हैं।

0: ये सुंदर गीत जो फिल्म का नाम लक्ष्मी से निकाला गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने अपना कला से प्रदर्शन दिया, जिसका और सुंदर संदेश हम सब अभी जो ये गीत के माध्यम से भी कुछ ना कुछ संदेश हम सब कोशिश कर रहे हैं यहाँ आपके लिए रखने को। कहने का तो ये है कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो बबली जी, आगे में संदेश बिच्छू का संदेश और क्या संदेश है?
1: मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही यह सभी बच्चे उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। 84 लाख के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसलिए भवसागर को आगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है।
0: तो ये भी कर्मों का फल कहा जाता है ना?
1: हाँ, फल भी कह सकते हैं जरूर। अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में भी कर्म करेगा। नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे दुख और सुख मिलते रहेंगे, यह तय है। मनुष्य जन्म बड़े ही मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था, और इनमें से भी कोई सेठ साहूकार या कुछ और होंगे। इनके गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को कहते थे तो यह भी हंसकर जवाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की और पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, लेकिन अब गुरु नहीं है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है तो कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुलाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? परमात्मा की बंदगी कर्म फलों को भी धो डालती है। हमें चाहिए कि हम नियमती परमात्मा का भजन सिमरन करते रहें और उनका शुक्रिया अदा करते रहें।
0: तो ये संदेश हुआ बिच्छू का, और जो जा करके उनके बच्चों कैसे खा जाते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: और करनी का फल यानी कि 84 लाख योनियों में हम सब भी मनुष्य का जीवन में को प्राप्त हुआ है, और क्या करना है ये तो बस हम किसी को ये नहीं कह सकता क्या ठीक है या अच्छा है। हमें तो बस ये मौका मिला है कि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में अपना संदेश को और रखने को। ज्योति का प्रकाश का यही लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ जाए। दोस्तों, अभी हम सब आपके लिए ये संदेश लेकर आए हैं जो भंडारा कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने सुने भी है कि भंडारा दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा में, और वहाँ पर लंगर कहलाते हैं, वहाँ पर पंथी में बैठ करके खाना खाया जाता है, और भंडारा भी जो हम सब जैसे सूरीनाम में, वैसे तो ना कि यज्ञ में, हम लोग सूरीनाम में ऐसे बैठते थे जहाँ पर विवाह संस्कार होते थे आदि, तो वहाँ और किस चीज़ का, कहीं केला का पत्ता तो कभी वारीबोंग का पत्ता पे, और अल्मोनियम के गिलास होते थे, सभी एक साथ में बैठ करके और वहाँ पर भी और भोजन करते थे। मेरे ख्याल से उसे भी भंडारा कहते हैं कि नहीं?
1: जरूर, वो भी भंडारा है। भारत में भी पहले अभी भी पत्तल में भंडारा दिया जाता है, जो प्रसाद होता है। और गुरुद्वारे में आजकल थालियाँ चल पड़ी, थाली में देना शुरू कर दिया।
0: क्योंकि हम लोगों ने सूरीनाम में ऐसे होते थे कि जब खाना जब बटाए लगते थे ना, तो पहले पत्ता को ठोक ठाक करके उसे और अपने स्थान से बैठाते थे, फिर जब पत्ता बटा जाता था तो उसके बाद में चावल लाया जाता था, और चावल कहते जो हम लोग भात से कहते हैं ना, भात।
1: हाँ जी।
0: तो भात से हम लोगों ने जब भात जो बटा जाता था तो उसमें एक यानी कि एक कैसे कहते हैं गहराई बना देते थे, क्योंकि गहराई इसलिए बनाया जाता था उसमें क्योंकि भात के बाद में अभी दाल आने वाले हैं, और दाल कहीं गिर ना जाए, और खाने का राजा कहलाता है दाल को।
1: हाँ जी।
0: तो दाल के लिए हम सब और तैयारियां करने लगते थे। दोस्तों, हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जिस ओर का विषय है आज भंडारा। और आप भी इस बात को सुन करके कुछ कुछ ख्याल आते होंगे आपके कि भंडारा कैसे हुआ था, होते थे सूरीनाम में, और कहीं कहीं तो कुछ नरासी पहले वाले तो पैरा पे बैठ करके भी, और यानी कि भंडारा अपना खाना आदि और खिलाते थे। क्यों ना हम एक सुंदर गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर संदेशों में संदेश जो आज है तो हम सब आपके लिए रखने वाले हैं।
1: हाँ जी, जरूर।

0: ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक को तो सब कुछ मालूम होता है कि कौन नेता कैसा है, कौन मिनिस्टर कैसा है, तभी तो उसको कुर्सी मिलती है।
1: तो ये पब्लिक ये सब जानती है, पर आज का विषय जो हमारे है कि हमें संदेश मिला है कि भंडारा क्यों किया जाता है, कैसे कराया जाता है, और उस पर ज़्यादा तादाद में हम सब तो कुछ न कुछ उसके बारे में बातचीत हो ही चुके हैं, उस ओर बढ़े बबली जी।
0: हाँ जी जरूर। लॉकडाउन में वह लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। लॉकडाउन में लोगों ने जगह जगह खाना बांटा था।
1: हाँ, इंडिया में यहाँ पर भी ना।
0: हाँ जी, पूरे वेरल में
1: कहीं कहीं पे और जा करके खाना को बांटे।
0: हाँ जी, क्योंकि सब लोगों का काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसीलिए सबने खाना बांटना शुरू किया। तो
1: ऐसे भी है कि मंदिरों में भी, मंदिरों से भी, काफ़ी मंदिरों और ब्यूथ हाउस से भी लोग बना बना करके और खाना को और बांटे।
0: हाँ जी, हैरानी की बात यह थी कि एक कुत्ता हर रोज आता और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था।
1: ये भारत का वृतांत है।
0: हाँ जी, भारत का। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को ना काट ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वह लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे, तभी देखा कि वह कुत्ता तेज़ी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपटकर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी, वह डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ दूर एक झोंपड़ी में घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ झोंपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोंपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोंपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और उसका एक पैर भी नहीं है, गंदे से कपड़े हैं उसके। ओ भैया, यह कुत्ता तुम्हारा है क्या?
1: यानी कि ये कुत्ता जो किसी के जहाँ पर खाना बटा है वहाँ से थैला कहते हैं जो लिफाफा ना।
0: हाँ जी,
1: तो लिफाफा लेकर के और चले जाते हैं।
0: हाँ, वहाँ से भाग गया और भाग के एक झोंपड़ी, यानी जैसे घास फूस की झोंपड़ी।
1: हाँ, झोंपड़ी बनाते हैं।
0: हाँ जी, झोंपड़ी में घुस गया।
1: तो वहाँ एक व्यक्ति रहते थे।
0: हाँ जी, वो व्यक्ति बेचारा, उसका एक पैर नहीं था और बेचारा गंदे कपड़े पहने हुए तो लेटा हुआ था,
1: ऐसा बीमार आदमी।
0: हाँ जी, बीमार आदमी। और जो कुत्ते को डंडा लेके पीछे भागा कुत्ते के, वो भी वहाँ पर पहुँच गया लड़का। ओ भैया, यह कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है।
1: यानी कि अब समझ में आ रहा है कि कालू कुत्ता का नाम है।
0: हाँ जी,
1: ये गलत फैमिली हमारे सभी सुनने वालों को ना होए।
0: और नहीं, जरूर उसे कुत्ता मत कहो भाई, वह आदमी बोला। अरे भाई, यह हर रोज खाना छीनकर भागता है, किसी को काट लिया तो? ऐसे लॉकडाउन में तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इसे बांध के रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूँगा, मेरी भाषा भले ही ना समझता हो लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है, मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे यह संबंध समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ जा खाना खा ले।
1: तो उन्होंने ये आवाज़ लगाई कि बेटा कालू खाना खा ले।

0: अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, ये सुंदर गीत जो पुराने फिल्म से निकाला गया। और बबली जी, इसमें संदेश क्या है? और क्योंकि अभी जो संदेश आप दे रहे थे कि एक कुत्ता जो पशु हो करके और अपने मालिक के लिए और जा करके खाना लाते हैं, तो और संदेश क्या है?
1: हाँ जी, इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं,
0: यानी कि जब वो व्यक्ति कुत्ते के पीछा पीछा करते करते कोठी में आए।
1: हाँ जी, तो दोनों में बातचीत,
0: कोठी और झोपड़ी में अंतर है ना।
1: हाँ जी, झोपड़ी होती है घास फूस से बनी और कोठी तो सुंदर
0: बड़ा घर।
1: हाँ जी, बड़ा घर,
0: बड़ा मकान।
1: हाँ जी, गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा। मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था, तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है।
0: तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत है, ये भारत देश में एक ऐतिहासिक संदेश जो आप हम सबको सुना रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: और दोस्तों ये संदेश अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, पर उससे पहले क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ जी,
0: गीत का बोल जो इस समय हम सब कर दे मदद गरीब के।

0: फूलों फलों, ये सुंदर गीत जो हम सब चलाए, आज का विषय जो कि भंडारा है और भंडारा का महत्व, अभी तो उस ओर हम सब पहुँच ही नहीं पाए हैं, बस छलांग लगाने वाले हैं। और बबली जी, ये बात तो हम भी जानते हैं कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से, ये बात हम जरूर जानते हैं। पर संदेश में जो आपने रख रहे हैं, ये सुंदर संदेश जो भारत देश के एक इतिहास तथा एक ये कह सकते हैं इतिहास, अभी हाल ही में जब लॉकडाउन के समय पे हुआ है, अभी हाल ही में ऐसा संदेश जो भारत देश में हुआ है, तो उस संदेश में क्या और रखा हुआ है?
1: हाँ जी जरूर। आगे वो कहते हैं, वह लड़का एकदम मौन हो गया, उसे यह संबंध समझ में नहीं आ रहा था।
0: क्योंकि जो वो जो मालिक तथा हाँ, जो आदमी
1: मालिक और कुत्ते का संबंध उस नौजवान को समझ में नहीं आया,
0: ऐसा?
1: हाँ जी। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू ओ बेटा कालू, आ जा खाना खा ले।
0: तो वो आदमी ने कालू बेटा को बुलाया, यानी कि वो कुत्ते को बुलाया।
1: हाँ जी, आवाज़ दी। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा, खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस आदमी ने अपने हिस्से से खाने शुरू किया तो उसे देखते हुए कालू ने भी खाना शुरू कर दिया, दोनों खाने में व्यस्त हो गए।
0: दोस्तों, ये एक अच्छा संदेश है जिसे शायद हम भूल गए होंगे। पहले भी हम कोई भी यज्ञ में और जाते थे, कोई भी और ऐसा कार्य में जाते थे, तो पहले कुछ नियम होते थे कि कौन पहले खाना खाएगा, और उसके बाद में हम सब बच्चे जब थे तो खाने खाते थे। और आज लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, समय से हमें भी बदलना है, पर क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसका जानकारी शायद हम सबको नहीं होगा। पर यहाँ ये संदेश है कि देखिए कि एक पशु जो है, पशु जो जा कर के अपने और मालिक के लिए खाना लाते हैं, खाना मालिक के साथ में खाते हैं, और किस प्रकार से मालिक के खाना प्राप्त करते हैं और फिर खाना को खाते हैं।
1: हाँ जी। उस लड़के के हाथ से डंडा छूट गया, जो पीछे कुत्ते के भागा था उसके हाथ से डंडा छूट गया,
0: यानी कि जो खाना का रखवाला था।
1: हाँ जी। और डंडा नीचे गिर पड़ा। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया, वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी,
0: यानी कि उसे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार का अवभेद हो रहा है यहाँ, किस प्रकार का, और जो एक पशु और एक मनुष्य का।
1: हाँ जी। भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते हैं कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए।
0: तो कहने के ये बात हो जाता है दोस्तों कि देखो, एक पशु जो अपने और बुजुर्ग यानी कि अपने और मालिक के लिए खाना तैयार करके और लाते हैं, और तथा वहाँ से छीन करके लिफाफा लेकर आते अपने मालिक के लिए, हमें शायद ये संदेश ये देता रहा होगा कि हम शायद बहुत भीड़ भाड़ के जिंदगी में जी रहे हैं, हमें अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए तो दूर, अपने नाना नानी, आजा आजी जो हमारे बुजुर्ग है, उनके लिए तो समय है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि हमें बहुत भीड़ भाड़ है, हमें अपने जीवन का करियर को बनाना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, और हमें अपना जीना जीना है। तो यहाँ एक ऐसा एक पशु, एक कुत्ता होकर के, और जो जा करके अपने मालिक के लिए, जो अपने मालिक के सेवा के लिए क्या करते हैं। बबली जी, ऐसा क्यों ना क्यों हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, गीत के बाद में ये संदेश जरूर आप और आगे ले जाना।
1: हाँ जी जरूर।
2: ये समझो और समझाओ।

0: दाल रोटी खाओ प्रभु की गुण गाओ, ये सुंदर गीत जो हम सब कार्यक्रम में रखे। दोस्तों आज का जो विषय है भंडारा, अभी उस ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं। समय पे हम सबको भी ध्यान देना है बबली जी, पर आज का संदेश में जो ये भी संदेश हम रख देते हैं, अपने हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जो अभी संदेश बबली जी ने सुनाई कि एक पशु जो एक कुत्ता और जा करके और अपना संदेश हम मनुष्य को और जानी की देते हैं। कभी काल के हम लोग पशु, आजकल तो व्हाट्सएप बरेख काफ़ी बनते हैं बबली जी।
1: जी।
0: और व्हाट्सएप बरेख में देखो रंग बिरंगी और संदेश पशु पंछी के ओर से लोग और बना बना करके रख देते हैं, और उसमें हम सब के कितना सीख मिलता है दोस्तों। और आज के विषय जो बबली जी हम सबको आगे सुनाने वाले हैं, क्या संदेश है बबली जी?
1: हाँ जी, आगे वो कहते हैं, रहने दो भाई, किसी और को इसकी जरूरत होगी, मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते हुए मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी आदमी से छीनने को उतारू है और यह कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीना नहीं, सीधा हमसे लेना।
0: तो ये संदेश है कि वो यानी कि जो भंडारा करते थे तो कुत्ता को ये संदेश देते हैं ना कि आकर के रोज और
1: हाँ
0: खाना ले जाना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अपने मालिक के लिए।
1: हाँ, और 2 पैकेट देंगे कल से,
0: कल से जो छीन कर ले जाते थे उसके छीनने की जरूरत ही नहीं।
1: हाँ जी, अब दोनों के 2 पैकेट मिलेंगे, एक मालिक के लिए एक कुत्ते के लिए। इस संदेश से हमें शिक्षा भी मिलती है।
0: शिक्षा जरूर जरूर, कुछ उसके बारे में आप बताओ।
1: हाँ जी, कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का उपयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। हमें तो भगवान ने असीम कृपा का मानव जन्म दिया है, और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी नाम से किसी मजबूर को लूट रहे हैं।
0: ना ही सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पे, पर आश्रम के नाम पे और ऐसे कितने प्रकार के चीजों पे लोग को लूट मार में लगे हुए हैं।
1: हाँ जी, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है, ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्य कार्य ही नहीं किया और हमारा ये अमोलक जन्म चला गया।
0: तो दोस्तों इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सुंदर शरीर ये सुंदर काया हम सबको प्राप्त हुआ है, क्योंकि पाना तो सभी चाहते हैं भगवान को, पर पकड़े बैठे हैं अभिमान को। तो अभी हम जो आज का विषय है उस ओर छलांग लगाने वाले हैं, पर क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: ये सुंदर गीत जो हम सब सुने और जा कर के जिसमें राजेश खन्ना ने अपना कला से प्रदर्शन किया कि जिसने ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कि कभी जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया होगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा संदेश हम सब छलांग लगाने वाले हैं, जो आज का भंडारा है विशेष और यानी कि तेईमा, तो भंडारा से पहले बबली जी मेरे ख्याल से आप फिर कुछ कहने वाले हैं, आप उंगली उठा चुके तो हम आपका माइक जरूर ऑन पे कर देते हैं। और क्या संदेश है?
1: हाँ जी जरूर। चींटी कितनी छोटी,
0: चींटी बोले तो जो चूटी,
1: हाँ जी हिंदी में चींटी कहते तो,
0: हाँ जी
1: चींटी कितनी छोटी है, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेना पड़ेगा।
0: 3-4 जन्म?
1: हाँ जी।
0: वैसे तो हरिद्वार से ऋषिकेश बस 24 किलोमीटर का फासला है।
1: वो इंसान के लिए ना, चींटी के लिए नहीं।
0: चींटी के लिए 3-4 जन्म लेना पड़ेगा?
1: हाँ जी। लेकिन यही चींटी हरिद्वार जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में ऋषिकेश पहुँच जाएगी।
0: वो तो पैदल ही पैदल 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे।
1: हाँ जी। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भव सागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं कई जन्म लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बतलाए मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलें तो वो आसानी से आपको भव सागर पार करा सकते हैं।
0: आसानी से भव सागर पार करा सकते हैं। दोस्तों ये सुंदर संदेश जो बबली जी ने हम सबको सुनाए, अभी हम एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं। गीत के बाद में हम सब और जो आज का मूल्य संदेश यानी कि भंडारा है उस ओर हम बढ़ने वाले हैं। चला देते हैं ये गीत और फिर उसके बाद में विषय और बढ़ेंगे।
1: हाँ जी।

0: तेरी मेहर बानिया, जो फिल्म जिसमें जैकी श्रॉफ अपना और कला से प्रदर्शन दिया, बबली जी ये फिल्म किस चीज़ के बारे में जा रहा था?
1: ये फिल्म जानवर के ऊपर है, कुत्ते के बारे में, कि कुत्ता अपने मालिक का कितना वफादार है। जैकी श्रॉफ का कुत्ता होता है इस फिल्म में, और पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया है। पूनम ढिल्लों को लोग मार देते हैं, फिर कुत्ता खोजबीन करके लाता है और बताता है जैकी श्रॉफ को कि किसने मारा है पूनम ढिल्लों को।
0: जो जानवर होता है कितना वफादार होता है।
1: हाँ जी, ये दिखाया गया है।
0: चलो आज के विषय जो हम सब रखे हैं, और विषय जो हमारे आज का है भंडारा, विषय जो भंडारा है और उस ओर बढ़ने वाले हैं, पर भंडारा में क्या मिलता है पहले उस ओर के लिए एक सुंदर सा गीत चला देते हैं, क्योंकि भंडारा में हमें ये पता है कि वहाँ कम से कम खाना मिलेगा, तो खाना मिलेगा पीना मिलेगा, भंडारा में अभी क्या क्या मिलेगा ये हम सब और सुनने वाले हैं।

0: पसीना मिलेगा भंडारा में क्या से क्या नहीं मिलेगा। बबली जी, ये बात है कि आज का विषय जो अभी हम सब शुरू किए हैं और भंडारा के ओर हम लोग छलांग लगा चुके हैं, तो संदेश शुरू कैसे होता है?
1: संदेश शुरू होता है, गुरु नानक सच्चे पातशाह रावी नदी के किनारे बैठे थे।
0: गुरु नानक सच्ची पासा
1: सच्चे पातशाह,
0: ऐसा?
1: हाँ जी। वहाँ पर सेठ धूनी चंद आया, गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, यह कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, यह जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक जी बोले, ठीक है, अपना एड्रेस बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, यह तो किसी का भोजन मानते नहीं, आज कैसे मान लिया? सेठ धूनी चंद ने कहा, महाराज, मेरा एड्रेस किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही तो हूँ। संतो, सतगुरु को घर बुला रहा है और यह नहीं कह रहा, सतगुरु यह घर तो तेरा ही है। यहाँ नगर में 1 लाख मोर होना, किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है, मेरे पास 12 लाख मोर हैं, बाहर झंडे लगे हैं, किसी से पूछ लेना सेठ धूनी चंद का घर कहाँ पे है, आज आप बहुत लंगर है, आके खाना।
2: तो लंगर वहाँ पे भारत में बहुत रहता है, तो कैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है लंगर का?
1: लंगर सब मिलके बनाते हैं और अपना फिर पहले पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद पंक्ति में बैठकर सब लंगर खाते हैं।
2: हाँ, तो वो सब फ्री रहता है खरातीस?
1: हाँ जी।
2: बहुत अच्छा, भारत में सब इस प्रकार का लंगर होता है। अभी हम भी भारत गए थे तो वहाँ पे लंगर किया था।
3: राजेंद्र जी, हमने देखा व्हाट्सएप बरख पे कि कितने 100 लोग वहाँ था और आपने लंगर करवा रहे थे।
2: हाँ, 700 लोग था।
3: 700 लोग?
2: हाँ।
3: और यहाँ हम सब मंदिरों में बस 50-60 लोग हो जाते तो हम लोग,
2: हाँ,
3: और 700 लोग का और लंगर करवा के आप पहुँच गए।
2: पहुँच गए,
3: तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में अब राजेंद्र जी परेल के पीछे आ गए, क्योंकि हम मुझसे तो कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो ही जाते हैं, और अब आप आ गए हैं तो कार्यक्रम लगातार आगे की ओर हम बढ़ाने वाले हैं।
2: जरूर।

0: रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दिए भगवान। इसका मतलब है कि रघुपति जो है भगवान जो है वो राजा राम है और पतित पावन जिनके पावन में है वो सीताराम है। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर हो या अल्लाह हो ये एक ही नाम, भगवान का नाम ही कोई ईश्वर कहता है कोई अल्लाह कहता है। सबको सन्मति, सबको अच्छी बुद्धि दे और सबको तार दे। बहुत ही सुंदर जो गाना था संजय जी ने पिटारा से निकाला। शांता जी तो अभी है नहीं पिटारा लेके, लेकिन अभी संजय जी पिटारा लेके बैठते हैं। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाने बढ़ते हुए सतगुरु की जो बात चल रही थी, सदगुरु सच्चे पातशाह ने तो तारना था, मर्दाना जी से कहा चल मर्दानिया आज इसी का नंबर लगाते हैं, आज इसको तारने चलते हैं। सच्चे पातशाह सेठ के घर आए, यहाँ पंक्तें लगी है, पंक्तें मतलब कई लंबी लाइनें लगी है। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं, सौ ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे हैं। सच्चे पातशाह भी जाकर बैठ गई, सेठ जी ने कहा आ जाओ आप भी यहाँ बैठ जाओ। नानक सच्चे पातशाह ने कहा पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा आप तो बड़े संतोषी हो, सबर वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बांटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सच्चे पातशाह ने पूछा सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है। सेठ कहने लगा महाराज जी ये अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया, आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। सच्चे पातशाह ने पूछा तो पिताजी का कल्याण हो गया। सेठ जी ने कहा हाँ महाराज, सौ ब्राह्मण खा के चले गए, सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले और अभी भी लंगर चल रहा है, सबने यहाँ कहा तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक जी कहने लगे अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों तक भूखा बैठा है, 3 दिनों से भूखा बैठे हैं। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। सच्चे पातशाह ने कहा ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है न इसे ले जा, वहाँ नदी के पहले परले तरफ झाड़ में तेरा पिता बैठा है बाघ बन के, मेरी थाली ले जा, हमने अपनी नजर कर दी है, इस थाल में अभी प्रसाद बन गया है। सदगुरु के पास 2 तरीके के भोग लगता है, एक प्रसाद जो हम पदार्थ खाते हैं, एक गुरु लंगर चख लेवे या गुरु की नज़र पर जावे। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी, पर सच्चे पातशाह की बाणी गुरु नानक जी की नज़र बैठकर सेठ कांप गया। कहने लगा महाराज वो तो बाघ हैं, कहीं मेरे पे ना आ जाए। गुरु नानक जी कहा जा नहीं आएगा तेरे पे, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेगा निहाल हो जाएगा, वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनी चंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे, मन कभी नहीं मानता कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठकर नदी के परली तरफ गया जहाँ गुरु नानक जी ने कहा था झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है तो उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वहाँ बाघ मिला, और जब झाड़ खड़कने की आवाज़ हुई तो बाघ ने मुंह ऊपर किया दुनी चंद के ऊपर, तो सेठ को लगा मेरा बाप भी मेरे ऊपर ऐसा ही देखता था, उसकी आँख भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा बापू भूख है, न तेरे लिए गुरु नानक जी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद आया वो बाघ का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा दुनी चंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ, तुझा उनके चरण पकड़ कर वो कहीं चले न जाए। पता है मैं इस योनि में क्यों आया, मेरा अंत समा आया तो पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की बू मेरे पास आई, मेरा अंत समा मुझे लगा, थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूँ। तब निरंकार ने मुझे बाघ की योनि दी, अब जितना मर्जी उतना मांस खा, क्योंकि अंत समय जैसा मन में ख्याल आ जाए नारायण उसी तरफ भेज देता है। अंत समय नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाता है। आज का हमारा ये वृतांत रहा। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मेरे भक्त त्रिलोचन ने नरमुक्ति पीताम्बर मंगे हृदय बसे। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा सदगुरु आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ है। तो इस प्रकार से कल्याण होता है जो कहानी के माध्यम से लोगों को सुनने को और समझने को मिला, किस प्रकार से हो सकता है वही सब लोगों को कल्याण कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक सुंदर से नगमे की ओर बढ़ते हैं।
1: जरूर नगमे की ओर बढ़े, पर राजेंद्र जी ये बात मुझे, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो शेर अंत समय आने पे और मांस का और बदबू सूंघ लिए थे, उसे मन किया खाने को।
0: हाँ, जब उसका अंत समय हो गया तो अंत समय में इसलिए कहते हैं कि अंत समय जब आता है तो एकदम भक्ति भाव में और प्रभु की ओर श्रद्धा विश्वास करके अच्छी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ उनकी इच्छा मांस खाने की हुई और जब जो इच्छा होती है उसी तरफ उस योनि में वो व्यक्ति चले जाता है और उसकी यो बाघ योनि बनी, व्याघ्र यानी बाघ। और फिर परमात्मा ने, प्रभु ने कहा कि जा तू मांस ही खा पूरी जिंदगी भर, खूब मांस खा।
1: तो यानी कि वो शेर का और जा करके जन्म पाया और जाओ कि खूब मांस खाओ।
0: हाँ, बाघ का जन्म पाया और उसने मांस ही खाया और कुछ खाया ही नहीं,
1: बस मां से खाए।
0: हाँ।
1: तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि किस प्रकार से और भंडारा का महत्व जो आज हम सब और आपके लिए रखे। राजेंद्र जी वो गीत की ओर हम सबको बढ़ना है जिसका हमें बेचैनी से इंतजार नहीं है, फिर भी लागी छूटे ना।
0: हाँ, लागी छूटे ना तो बहुत ही बेचैनी से इंतजार रहता है।
1: दोस्तों ये बात हो जाता है कि जिसके मन में ये होता है कि हमारे दो हाथ, हम अपने दो हाथ से कमाए और 100 हाथ को खिलाए, तो जो ऐसा सोचते हैं तो उनके कहावत है कि भंडार हर समय हरा भरा रहता है। तो क्या इसमें संदेश है, क्या सीख है, ये हम आप पे निर्भर रख देते हैं। पर हमारे जो राजेंद्र जी है पनेल के पीछे वही गीत और बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जी
0: जी
1: चला दीजिए।
0: जरूर।

दूर हूँ फिर भी निशाना है तेरा, और सोच ले फिर से। दूर तो रेडियो के माध्यम से सब लोग अपने अपने घर में और अपने काम में लगे हैं, लेकिन जो रेडियो का संदेश है एक जगह से बोला जाए और 188 देशों में चले जाता है, जैसा कि संजय जी कहते हैं हर समय, सब लोग वहाँ संदेश पाते हैं। और मुझे लगता है कि संदेश सुन के सबको कुछ ना कुछ ज्ञान

0: सनम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे और अच्छे दोस्त भी ये कहते हैं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है कि जो कि कार्यक्रम में और सहयोग दिए अपने हमारे साथ, जो बबली जी जो अपने ओर से सहयोग दिए, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।